0: से भेजे रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
0: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी कौली। कद खसिरल लज़ीना, यकीनन नुक्से वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटला दिया, जो मानते ही नहीं कि अल्लाह से मिलना है जाके। हत्ता इदा जाअतहुमुस्साअतु बग्ततन, यहाँ तक कि जब उनके पास क़यामत अचानक आ जाएगी। और क़यामत से पहले मौत भी तो अचानक आ जाती है ना। जब अचानक हकीकत सामने आ जाएगी, कालू कहेंगे, या हसरतना, हाय अफसोस हम पर, यानी अपने हाथ मलेंगे, हाय अफसोस हम पर, अलामा फर्रतना फीहा, ऊपर उसके जो कोताही की हमने इसमें। फर्रतना का लफ्ज फेरे तोए से है, दूसरों को आगे कर देना, खुद पीछे रह जाना। फरत फुलानुन इलल्मा का मुहावरा इस्तेमाल होता है कि फलां शख्स पानी के घाट या चश्मे की तरफ सबसे पहले चला गया। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनफरतुकुम अलल हौज, कि मैं हौज पर, हौजे कौसर पर तुम सबसे पहले पहुंचा हुआ होगा। यानी रजाए इलाही के हुसूल में हमने दूसरों को आगे बढ़ने दिया, खुद पीछे रह गए। आमतौर पर रोज भी ऐसे करते हैं ना, नमाज का वक्त हम कहते हैं अच्छा तुम सब पहले वजू कर लो, बाद में मैं कर लूंगा, करते हैं ना। तो फर्रतना कमी की, कोताही की, किसी भी काम में जो कोताही होती है پورا چانس اویل نہ کرنا، پورے موقع کو استعمال نہ کرنا۔

0: एड़ियों शायों खांदी कर सेहत ठीक रांदी
1: तमा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी तो माँ के खाई दम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पियारण वारी माँ जी बेहतरीन गिजा भाव आई बार इन्हीं जो हक का है ही पैगाम कश फाउंडेशन आई कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का

प्यार जो पानी न मिले तो दिल जो गुलिस्तान कदें भी सरसब्ज ए शादाब न थे। खुराक भी अड़ी जो डी में दह भरा मिले तो भी दिल जो ड्रो न थे। प्रिय जे प्यार ए सूह माई दिल ड्रपंदी नई अखियो कोई छो न इन जिंदगी में खुशी जो एहसास हो जे या मौत जो भव दिल दिल ही है।

जी साईं मुंहिंजा असांजो अॼु जो जेको सुवालु आहे त हिकु मिंट में बिजली जी रफ़्तार केतिरी आहे। जी हा, उमेद त तव्हां सुवालु नोट कयो हूंदो ऐं असांजो सुवालु इहो आहे त बिजली हवाले सां त बिजली जेका तेज़ रफ़्तार आहे हिकु मिंट में केतिरी आहे। जी हा, तव्हां असांखे सुवाल जो सही जवाबु एस एम एस ज़रिए ॾेई सघो था। असांजो एस एम एस करण जो आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे राइट ऑप्शन वेंदव, उते एस एल आर के लिखी तव्हां स्पेस ॾींदव, उन बाद पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, सुवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां 888 ते सेंड कंदव। ऐं जेकॾहिं तव्हां फेसबुक ते प्रोग्राम ॿुधो पिया या ॿुधणु चाहियो था त असांजी जी एफ एम 88 जी जेका आई डी आहे, जेको असांजो फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि पंहिंजे सुवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं तव्हां असांखे लाइव कॉल ज़रिए असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन थींदी 10 बजे न्यूज़ खां बाद में, तव्हां असांखे सुवाल जो जवाबु लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। साईं मुंहिंजा ही अखियूं, ही नज़रूं, ही दीदूं सदाई मुसाफ़िरनि जीअं सफ़र में रहंदियूं आहिनि, ही हर वक़्तु मुतलाशी रहंदियूं आहिनि, कॾहिं कंहिं ख़ूबसूरत चीज़नि जूं त कॾहिं किन ख़ूबसूरत चहिरनि ऐं अखियुनि जूं। ही अखियूं, ही नज़रूं, दीदूं पंहिंजे प्यार, पिरी ऐं ख़ूबसूरत अखियुनि जूं ॻोल्हाऊं हूंदियूं आहिनि। अखियूं सदाई सूंहं ऐं प्यार जूं प्यासियूं हूंदियूं आहिनि, सूंहं अखियुनि जो नूर वधाए छॾींदी आहे। जेसीं ताईं अखियूं को ख़ूबसूरत चहिरो न ॾिसनि त बेचीन जे रेगिस्तान में भिटकंदी वतनि, ऐं अगरि उहे दीदूं को दिलबर पसंदि त आशूरनि में बि ख़ुशियूं।

हा जी असमैन सवाल आहे असांजे अॼ जे प्रोग्राम जो त बिजली जी रफ़्तार हिकु मिंट में केतिरी आहे. जी असमैन, ऐं अव्हां चवंदा आहियो त आलमी ॾींहुं नोट न करायो. अॼु आलमी ॾींहुं मूंखे कोन लधो पर असांखे इहो ई लभी पियो त हिकु मिंट में बिजली जी तेज़ रफ़्तार केतिरी आहे. तव्हां असांखे ॿुधाए था सघो था, एस एम एस ज़रिए ॿुधाए सघो था, तव्हां असांखे फेसबुक जे ते बि तव्हां असांखे सुवाल जो जवाबु ॿुधाए सघो था, ऐं तव्हां असांखे मोबाइल नंबर ते बि पंहिंजो सुवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था. असांजो नंबर आहे 0332 1322 88.

ईरान के गडियल फौजी कमांड के सरबराह अब्दुल्लाह सुप्रीम लीडर मुश्तफा खमनाई से मुलाकात। ईरानी मीडिया मूजिब सुप्रीम लीडर मुश्तफा खमनाई फौजी सरबराह के नवन रहनुमाई कदम बाबत आगाह कर अली अब्दुल्ला सुप्रीम लीडर के ईरानी फौजी तैयारियों बाबत आगाही डिनी। कमांडर अली अब्दुल्ला चाहिए तो ईरानी फौज अमरीका इसराइल की कें भी कार्रवाई का मुकाबलो कर तैयार है। दुश्मन की कें भी गलती से ईरान जो रद्द अमल तेज सख्त फैसला तो होंद। पंडित मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी जो ईरानी हमसब अब्बास इराकी से फोन से राबतो चो जंग के खात्मे ला कोशिश आकाई इरादे अमल देने घुर्जे सामुद्री जहाजन की आजादी से को भी ना थे घुर्जे आपना हुरमज खोलने दबाव होजन से बहरान शिदत अख्तियार कर।

दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तियार जंग मुसल्लत कर दी। जब हमारे शेरदिल जवान मैदान कारजार में उतरे और हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुजदिल दुश्मन इस जंग का मुख्तर खुलासा बस इतना है कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानब दुश्मन के त्यारों का मलबा यूं महज चार

0: चीफ मार्शल लेवल चीफ हथियारबंद फौजन के जवानों के भेट पेश करें तो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर
2: सिंध धरती के मतवाले
3: टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
4: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहेजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
5: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ ख़ानदार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल अध मथे जो सूर जोड़ जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभिनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबुह 9 AM खां शाम 5 AM ताई बरोज जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-9984-7063
6: सिंध के माथे का झूमर
7: GFM 88 नेटवर्क
6: सिंध की आवाज

जी हा साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि अची चुका आहियूं ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां। ऐं साईं मुंहिंजा, असांजे अॼु जे प्रोग्राम में असांजो सुवाल आहे त बिजली जेका तेज़ रफ़्तारी आहे बिजली जी, उहा हिकु मिंट में केतिरी आहे? जी हा, असांजो सुवाल अव्हां खां इहो आहे त बिजली हिकु मिंट में केतिरी तेज़ रफ़्तार सां हले पई? ठीकु आहे मुंहिंजा, अव्हां असांखे ॿुधाए सघो था पंहिंजो SMS ज़रिए, फेसबुक ज़रिए ऐं मोबाइल नंबर ते। मोबाइल नंबर आहे 0333-221-3288। ऐं साईं मुंहिंजा, ॻाल्हि कंदासीं सीज़न जी, त हर कमकार जी बि हिकिड़ी सीज़न हूंदी आहे, मौसम हूंदी आहे, पर जेका शइ सीज़न न हुजे त असां उन ॻाल्हि खे कंदासीं अणमुदायती शइ, यानी सीज़न खां बिना। त ॾिसो, हिन वक़्तु जेके माण्हुनि जे ख़ुशियूं अलाह साईं हर इंसान जे घर में ॾे, असांजी दुआ आहे सभिनी भाइरनि खे, पर जेका हिन वक़्तु सीज़न शादियुनि जी जेका किथे किथे आहे त उहा पंहिंजो मालिकनि खे त बेज़ार करे थी, पर जेके ॼाणी हूंदा आहिनि, जेके सॾु वारा हूंदा आहिनि, उहे बि परेशान हूंदा आहिनि गर्मियुनि में त असां हिन शादीअ सॾ ते कीअं वञूं, गर्मी में गर्म कपिड़ा कीअं पायूं, ऐं ॿाहिरि गर्मीअ जी लुख पई लॻे, बाहि पई वसे, ऐं वेतर जेकॾहिं माण्हू खाधा गर्म खाईंदो त वरी जेको आहे सो इंसान जे में अञा पाणीअ जी उञ वधीक लॻंदी ऐं माण्हू परेशान थिए पियो। पर बहरहाल जेको माण्हू शादी करे पियो त उनजी हिकिड़ी ज़िंदगी जी जेका नई शुरूआति थींदी आहे, ऐं कंहिं फिलासफर जे कौल जीअं त हर रोज़ नए सिर नओं जनम वठे थी नई ज़िंदगी, ऐं तॾहिं कंहिं दानशर चयो आहे त अकुलमंद माण्हूअ लाइ हर ॾींहुं नओं ॾींहुं आहे, ऐं राति जो सुम्हण वक़्तु जॾहिं असां पंहिंजे ज़हन में हिकु खाको तयारु कयूं था त सुभाणे असांखे कहिड़ा कहिड़ा कम करणा आहिनि, पर असां रुगो इहो सोचींदासीं त असांजी शादी कॾहिं थी थिए, असांजो सुभाणो कॾहिं थो थिए, इहो इंसान पियो सोचींदो आहे। नौजवान जी इहा ज़हन में ॻाल्हि पई हूंदी आहे, ऐं ॻाल्हि कंदासीं कम जी अहमियत मुताबिक़ उनखे हासिलु कंदा वञूं त जेकर ज़िंदगी में हिकु आसानी ऐं तरतीब पैदा थी पवंदी आहे, तरतीब सां ज़िंदगी गुज़ारण करे हर माण्हू परेशान खां बची सघे थो। इन जे करे कोशिशि कयो, पंहिंजी नई ज़िंदगी में तरतीब ठाहियो, इंडेक्स ठाहियो, ऐं उन सां गॾु हलो, वक़्त जी रफ़्तार सां गॾु हलो, भले शादियूं कयो पर पंहिंजी गर्मियुनि खां पंहिंजो पाण खे बच। ही ख़ूबसूरत सहिरो अवां दोस्तनि जे नाम जेके हिन वक़्तु शादियूं करे रहिया आहिनि, जंहिंजी सोचुनि में आहिनि, या जंहिंजी अॼु शादी आहे, उन लाइ असांजे तरफ़ां ख़ूबसूरत सहिरो समीन कंवल जो आवाज़।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hemmé Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemmé Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती है जो असल राज. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक

0: इलाज सां कुदरती शिफा हासिल करियो। सेहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-89-84-763।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: नॉलेज मां सवाल जो ऐसा जनरल नॉलेज मां सवाल नो है
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
0: बाजार जी खाना मीरपुर खास का खालक लाचारी इकबाल लाचारी मीरपुर खास का यास्मीन मलक प्रोग्राम बुधे पी वकार जतोई सुधीर अमन जतोई बिलावल सनावला जाकिर हुसैन जावेद जतोई पीर सिर का प्रोग्राम बुधन पाया बाहरन जी वरी मेहरबानी उस्मान आराई मेरापुर का इनाम दिनों बंबरो गोठ नारो लग सखर का जोहेब कटबर जैनल आब्दीन रहमतपुर लाड़काने का नज़ीर मंगरो रोहिड़ी का आसफ अली चाचड़ वासफ अली बुगटी लाड़काने का कुर्बान अली खासकली झंडो मरी का हाजी इमदादुल्ला दायो सैफुल्ला दिलबर जवाद यासिर दायो लोअर कॉलोनी लाड़काने का असो भा मंजूर हुसैन जलबाणी रसूल बख्श जलबाणी मोहसन अहसन जलबाणी नंढड़ी पोपरी उन सा गड है गोठ गाजी खान जलबाणी का भाईर की वही मेहरबानी असाजा कुछ दोस्त हैं गोठ नूरसेन तुनियो बदीन का भा प्रोग्राम उनकी वही मेहरबानी मिठी थरपारकर जे गोठ जगी जो तड़ खां रमेश कुमार कोहली रामचंद प्रोग्राम बुधन पाया जेकाबाद का मोहम्मद मीरण जखराणी मोहम्मद खान कुंभार वफा जमाल कुंभार अहमद खान कुंभार हालेपुटा स्टाफ मीरपुर खास का ईदगाह जतोई बखर खां मोहम्मद हफीज़ रहमान मुल्तान खां गुल यासीन वड़ी मेहरबानी भाईरन जी रेहान खान बखर खां मोहम्मद हफीज़ रहमान भाईरन जा लख कुर्ब त साईं मुंहिंजा खूबसूरत नगमो आहे अवां दोस्तनि जे नाम पिया कयूं गॾिजी पिया एंजॉय कयूं

अजी साईं मुंहिंजा ऐं प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि. आख़िरी लम्हनि में कुझु दोस्तनि जा अञा नाला अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं. ॻोठ हरसा जी गढ़ी कोरकाणियुनि खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी अरबेलो कोरकाणी यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां इरशाद महेसर एजाज़ अली कलोड़ो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो माजिद अली जतोई निसार जतोई नारा स्टाप सखर लग सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जुणे जो मनीब रहमान जुणे जो मुजीब रहमान जुणे जो ॻोठु छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर ख़ान मक्सी ऐं ॻोठु मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर ऐं अहद अकबर शादाब चांडियो ॻोठु हसू जतोइनि खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई ॻोठु कंगन खां गुलाब ख़ान कुंभर शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर ॻोठु अहमद ख़ान लाशारी खां नियाज़ अली लाशारी नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी ॻोठु मोलिड़े माशी खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख़्तियार अली ज़हीर अब्बास सोलंगी त समान हीउ आख़िरी नगमो अव्हां दोस्तनि जी नाम ते.

अजिया समय न मास्टर मंज़ूर जी इन खूबस नगमे से प्रोग्राम रोशन सुबह जो वक्त तो पहुंची पो पुजणी से इजाज़त दींदा पैं मेज़बान नेमत अल्लाह जुड़ी जो कि तेसी तई वरी हयाती रही तो मुलाकात तवासा जरूर थी तेसी तई अल्लाह निगाहबान।

पर आई रांदियुनि तजवीज़ूं रद्द करण खां पोइ आलमी मार्केट में कचे तेल जे अघनि में वाधि 3% वाधि खां पोइ ब्रेंट कचो तेल 104 WTI ऐं यूएई मर्बन 90 डॉलर ते फी बैरल थी वियो। सोशल मीडिया ते जारी मुख़्तसर पैगाम में सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान जो जवाब पढ़ियो आहे, नाले मां त ईरानी नुमाइंदनि जो जवाब मूंखे पसंदि न आयो। सदर ट्रंप चयो त ईरान खे एटमी हथियार रखण जी इजाज़त न ॾींदासीं। ईरान गेम खेॾे पियो पर हाणे खेसि घणी डर न ॾींदासीं। ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम मलबे हेठां दफ़न थियल आहे, अमरीका जल्द उते पहुची वेंदो। कंहिं बि शख़्स ईरानी रचाव थियल यूरेनियम जे वेझो वञण जी कोशिश कई त खेसि धमाके सां उॾाए छॾींदासीं। उहो कॾहिं बि न चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़तम थी वई आहे, कुझु हथ बाक़ी आहिनि, ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था।

ਡੇਰਾਂਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਮੇ 53 ਅਰਬ 53 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੋਕਲਿਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਵਣ ਆਏ ਤਾਂ ਰਕਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਭੇਟ ਮੇ 11% ਵਧੀਕ ਆਏ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਮੇ 83 ਅਰਬ 83 ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੋਕਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਆ। शाहराह भुट्टो ईद उल उज़ा का अग खुली वेंदी टूल टैक्स पर बीणो थी वेंदो। शाहराह भुट्टो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सुमरो शाहराह भुट्टो ईद उल उज़ा का अग ट्रैफिक लाइट खोली वेंदी मनसूबे में पुल तामीर हेठ है पुल मुकम्मल न थी तो मतवाजल रस्तों रही भी शाहराह भुट्टो ट्रैफिक लाइट खोली वेंदी मुकम्मल खुलण का टूल टैक्स भी बीणो थी मनसूबे में 7 अरब रुपया खर्च थे। रतदेरो में स्कूल वेंदड़ नीगर मथा ट्रैक्टर ट्राली चढ़ी वही रतदेरो बाईपास रोड से 8 साल अब्दुल मालिक ट्रैक्टर ट्राली हेटा की बाढ़ की फौत थी वो पुलिस ट्रैक्टर में वही ड्राइवर के गिरफ्तार कर वरतो। बेहड़ में अब्दुल अजीज जोड़े जो लाइब्रेरी 6 मिनट का बंद कल शागिद एहतजाज किया लाइब्रेरी बंद करण तालीम दुश्मनी है महीनों का लाइब्रेरी बंद है लाइब्रेरी खोले शागिद के पढ़ाई लाइ पुरसकून माहौल फराहम किया वे। मासूम बाड़ी उजाला परवीन की बाजी आबियल है मेयर में अगवा थियल मासूम बाड़ी उजाला परवीन के अगवा थन्दे 28 दिन गुजरी वह बारसन सिविल सोसायटी के भुख हड़ताली कैंप जारी पुलिस जुड़ियल जे आई टी को नतीजो न दिनों उजाला परवीन सोलंगी जो वाल सुप्री प्राइमरी उस्ताद शमसदीन सोलंगी धीए लाए लुड़क लाड़े वेठो सन चवण है 28 दिन गुजरी वह पर पुलिस रुगो खातरियों कराने में पूरी है न्याणी बाजियाब कराए इंसाफ फराहम किया वे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS

0: खां शाम 5 वगे ताई बरोज जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:50 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर ट्यून्ड टू जियो रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार सिंध की आवाज। अरे यू कैसे हैं आप? आई होप जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है वो जब जब से सच कूल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपका और मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती वाला खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में हम सबसे पहले वक्त की बात करेंगे तो जी वक्त हुआ जाता है 11:22 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है। आप तमाम से लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बेटर देन एवर। अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बवसले खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब।

वो तमाम तो लोग जिन लोगों की यहाँ सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मैंने यहाँ पर रिजन सब दही हैव अ बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उनके लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन सुमा आमीन. मेरी आवाज जिन गलियों और शबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरी परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि हम मुझसे करना चाहते हैं सारी बातें करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना है. इस गाने को सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।

0: वंस अगेन आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप कॉल्स के थ्रू। तो कॉल करने के लिए 03000113488 के ऊपर कॉल कीजिएगा और हमारा सेगमेंट जिसका नाम है सुर लगाओ गाना सुनाओ, और सुर लगाओ गाना सुनाओ को हम स्टार्ट करने वाले हैं और कॉल कर सकते हैं आप लोग मुझे, और साथ साथ आप लोग मुझे 8881 पे मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं सिंपली मैसेज करने के लिए। जो लोग हमें सिंपली मैसेज करना चाहते हैं सो सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा दैट इज FM 88 GA सखर के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है जिंदगी गुलजार है की पोस्ट, उस पोस्ट के नीचे जो कि आपको नजर आ रही होगी पेज के ऊपर पहली पोस्ट, ठीक है, जो कि आपसे ठीक थोड़ी देर पहले पब्लिश की गई है, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, 19 मिनट पहले ये पब्लिश की गई है, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं एंड कॉल कर सकते हैं। हमारा सेगमेंट से लगाओ गाना सुनाओ, फर्स्ट कॉलर हम लेने जा रहे हैं 03000113488।
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है मेरी आपको?
1: जी जी मैम आ रही है, स्वागत आपके
0: आ रही है। ओके प्रोग्राम सुन रहे हैं सागर भाई?
1: जी जी मैम प्रोग्राम तो सुन रहे हैं,
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं। अच्छा जबरदस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, मुझे बताइए कि कौन सा गाना लेकर आए आज?
1: गाना तो मैम गाना वही सुना रहा हूँ मैंने सुना था आपको में।
0: अच्छा तो मुझे याद थोड़ी है, दोबारा सुना दे।
1: मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता रहा हूँ, मुझको आवाज दे मुझको आवाज दे, मैं तेरी अजनबी शहर में ढूंढता रहा हूँ, मुझको आवाज दे मुझको आवाज दे, मैं तेरी अजनबी शहर में।
0: ओके वेरी नाइस। ओके किसी को डेडिकेट करना है?
1: हाँ जी मैम डेट कब करना है? दोस्त कर रहे हैं शौकत मुरानी,
0: जल्दी जल्दी,
1: और राधा मारवाणी, और सबलोक मारवाणी, और फैमिली सागर मैं, और मोहम्मद हमजा अंसारी, और कुर्बान अली कुमरो
0: साहब। ओके जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज।

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेने जा रहे हैं, चेक करते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? कैसे भाई, ठीक ठाक? जी जी, मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाना सुनाएंगे?
1: प्रोग्राम
0: ओके, ठीक है, तो गाना नहीं सुनाएंगे?
1: हाँ, गाना बुलाएंगे आप।
0: ओके, सुना दें। ओके, किसी को डेडिकेट करना है?
1: हाँ,
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।

0: का गाना है
1: जी।
0: बहुत याद आते हो तुम।
1: हाँ
0: चले मैं इसको सर्च करती हूँ और मुझे मिल जाता है तो मैं प्ले करती हूँ। और कुछ कहेंगी? और कुछ नहीं। थैंक यू, बहुत सारा ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज। और जी हम गाना प्ले करेंगे जो कि मैं कर रही हूँ, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल आई थिंक। सो हियर कम्स द सॉन्ग। और आज का टंग ट्विस्टर, आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से है कि परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की। परवेज ने पुरानी पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग, परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की। ठीक है, ये कहना है परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की। इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, सो डेट अगला हमारा जो सेगमेंट है ना, जिसका नाम है बोलो तो माने, बोलो तो माने में हम करेंगे ये कि ये टंग ट्विस्टर बोलेंगे, जो बंदा सही सही ज्यादा ज्यादा बोलेगा जीत जाएगा। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib.
2: GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

डोनाल्ड ट्रंप पारां ईरान जो नयूं तजवीज़ूं रद्द करण खां पोइ आलमी मार्केट में कचे तेल जे अघनि में वाध 3% वाध खां पोइ ब्रेंट कचो तेल 104 ऐं WTI ऐं UAE बर्बन $99 फी पेरल थी पियो। सोशल मीडिया ते जारी मुख़्तसिर बयान में सदर ट्रंप चयो त ईरान जे जवाब पढ़ियो आहे, नाले मात्र ईरानी नुमाइंदनि जो जवाब मूंखे पसंदि न आयो। सदर ट्रंप चयो त ईरान खे एटमी हथियार खणण जी इजाज़त न ॾींदासीं। ईरान गेम खेॾी रहियो आहे पर हाणे खे घणी देरि न ॾिनी वेंदी। ईरान जो रचाव चलियल मलबे हेठां दफ़न थियल आहे, अमरीकी जल्द उते पहुची वेंदा। कंहिं बि शख़्स ईरानी रचाव चलियम जे वेझो वञण जी कोशिश कई त खेसि धमाके सां उॾाए छॾींदासीं, इहो कॾहिं बि न चयो आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़तम थी वई आहे, कुझु हदफ़ बाक़ी आहिनि पर ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था।

रांदड़ पाकिस्तान अप्रैल महीने में 53 करोड़ डॉलर पाकिस्तान मोकलिया। स्टेट बैंक पाकिस्तान चवणा है रकम अप्रैल 2025 के भेट में 11% आया। हलंदड़ साल के मार्च महीने में 83 करोड़ डॉलर अरब डॉलर मोकलिया हुआ। शाराए भुट्टो ईद उल अज़हा खां अॻु खुली वेंदी, टूल टैक्स पिया बीणो थी वेंदो। शाराए भुट्टो जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सुमरो चयो आहे त शाराए भुट्टो ईद उल अज़हा खां अॻु ट्रैफिक लाइ खोली वेंदी। मनसूबे में हिकु पुल तामीर हेठि आहे, पुल मुकमल न थी त मुतबादिल रस्तो ॾेई बि शाराए भुट्टो ट्रैफिक लाइ खोली वेंदी। मुकमल खुलण खां पोइ टूल टैक्स पिया बीणो थींदो। मनसूबो में 7 अरब रुपया ख़र्च थिया।

कराची जो खानगी कंपनियों सिंधी माण्डन का रोजगार खसन लग आवाज उथरण से खेन गिरफ्तार भी किया वो कराची में खानगी कंपनी कई वक्त समूरन सिंधी गालेंदर परतन के निकाली रही छी परतन चवण है कंपनी कई वक्त सिंधी मुलाजमन के टारगेट बढ़ाए निकाली नहीं आया है पुरमन एहतजाज करण पर ईस्ट सेंटर जिले के मुख्य थानों से मुंतकिल किया वो कराची बार एतू थी चूंडन में मुबैना दांदली जो केस दाखिल मुबैना दांदली जो केस बार मुलाजिम की फरियाद से सिटी कोर्ट थाने के दाखिल एफआईआर में जाना पो है तो 7 मई से कराची बार चूंडन दौरान दांदली की वाबिला कई वही अंडतल वकीलन बिलेट पेपर्स जबरदस्ती खेस नारेबाजी भी कई रोड़ी में औरत निंगरी के मुबैना तौर से अगवा कर वेलण से हादसों जख्मी निगरी गुम कौमी शाहरा के तलर मोटरसाइकिल में टक्कर लगन सबब डिनो जागरानी ए अर्ज मोहम्मद फौत भारो दुर्जे मानू इल्जाम मण तो जागरानी दुर्जे मानू घर से हमलो कर औरत बाड़ी के अगवा के हादसे में जवाबदार फौत औरत नजीरा भारो जख्मी थी पई बाड़ी रुखसाना गुम है पुलिस चवण है समूरे मामले की जांच कई पी वे निगरी की गोला भी जारी है

0: भरिया सिटी में प्रसाद नमूने गुम थियल नौजवान जो पैं घर के पेती में लाश हथ बनिया गुम थियल नौजवान रहमान उर्फ गुडो हकड़ो जो घर में पेती में लाश हथ आया हो बस भाव राजा हकड़ो छोड़ आया तो घर अंदर कमरे में धप जान से पेती खोली तो भाव जो लाश मिलो लाश सुन बाद भाजाई गुलनाज है मुझे बो भाव शहीद फरार थी वन शक है रहमान की जाल है भाव कतल कर लाश पेती में बंद कर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेट।

0: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहेंजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: हाँ हेर तक

रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99 84 700।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: once again, आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसान, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू। कॉल करने के लिए 03000113488 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स को हम रिसीव करेंगे। एंड आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि आप लोग मुझे कह के दिखाएंगे ये क्या हो रहा है। अब ठीक है, परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की, परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की, ठीक है ये कहना है। और जब आप ये कहेंगे तो आप जीनियस बन जाएंगे, यू नो व्हाट, ठीक है। जो बंदा ज्यादा ज्यादा भूलेगा वो विन कर जाएगा। अच्छा, इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल चेक करेंगे कौन है, कहाँ से हल्ला हो। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? सॉरी आवाज आपकी डिस्टॉर्शन आ रहा है आवाज में।
1: हेलो
0: हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
1: जी जी बिल्कुल, सर बात कर रहा
0: हूँ। ओके, प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी जी, देखते आपका ये प्रोग्राम हम सुनते हैं, जबरदस्त प्रोग्राम है आपका।
0: ओके, टंग ट्विस्टर सुना है आपने?
1: नहीं, ये हमारे खुद नहीं रहता है, बाकी हमारे मोलाई का गाना सुनाओ।
0: मोलाई का गाना सुनाते हैं जी, थैंक यू। और वही लोग कॉल करें जो कि या कहना जानते हो या कहना चाहते हो टंग ट्विस्टर, ठीक है। 03000113488 नेक्स्ट कॉलर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे
2: हैं?
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
2: आपको तो पता होगा आपका जो मुख्य रखता है वो आपका इस्तेमाल करता है।
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसका मतलब टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगे?
2: हाँ वो सुना है, लेकिन हमें नहीं आता ना।
0: नहीं आता सवाल आप? चलें जो आता है वो बता दें।
2: हमें हम आपके शो में शामिल हुए, यही हमें आना था।
0: हम आपके शो में
2: शामिल हुए, ये हमारे लिए।
0: चलें जबरदस्त, बड़ी नवाजिश। और कुछ?
2: और कहते हैं ना।
0: हाँ जी बोले।
2: कोई भी गाना मोलाई का सुनना।
0: ओके जी, मोलाई की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है, मोलाई को प्ले करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 03000113488 दैट इज अवर लाइव कॉलिंग नंबर एंड द नेक्स्ट कॉलर इज हियर। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं जोया।
0: जोया कहाँ से बात कर रही हैं? सखर में। कहाँ से बात कर रही हैं? जोया
3: बात कर रही
0: हूँ। ओके जोया, पहली दफा कॉल की है?
3: जी जी।
0: ओके, प्रोग्राम सुनती हो जोया?
3: जी मैं रोजाना सुनती हूँ।
0: रोजाना सुनती है, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि टंग ट्विस्टर सुनाएं?
3: रिपीट करूं?
0: रिपीट करूं बोलेंगी?
3: जी।
0: परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की। परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की।
3: नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रहा, चले कोई बात नहीं। और कुछ कहेंगी?
3: आप गाना सुनाएंगी?
0: हाँ जी बताएं, कौन सा सुनना है?
3: बस कॉल भी चला दो।
0: कौन सा?
3: जो आपको पसंद।
0: चले मुझे जो पसंद है मैं वो चला रही हूँ, थैंक यू। और कुछ? ओके जी, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ हम 03000113488 के ऊपर बहुत सारी लाइव कॉल्स को इंटरटेन कर रहे हैं।

0: Hello, assalamu alaikum. Okay, hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Sir Dard, kaisi ho?
1: ठीक हूँ, आप बताइए कैसे?
0: जी मैं अच्छी हूँ. मुझे बताएं कि आप प्रोग्राम सुन रही हैं?
1: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती हूँ.
0: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती हैं. अच्छा, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगी?
1: पहले मैं पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की.
0: हाँ, यही है.
1: पहले मैं पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. मैंने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. मैंने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. मैंने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. मैंने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश
0: की. आगे स्टॉप. वाओ, क्या स्पीड है. मतलब आपकी तो बढ़ती ही जा रही है. कम कम कब होगी? मतलब बढ़ेगी, अभी भी बढ़ेगी आगे?
1: ये तो आपके शिफ्ट में मैंने बोलना सीखे.
0: बोलना सीखे. माशाल्लाह, हंसते भी बड़ा अच्छा हो. ये वाली हंसी मुझे भी सिखा दो. क्या क्या?
1: गुड़ खा के मर गया.
0: नहीं, गुड़ खा के क्यों मरे, गुड़ खा के आप जिए. हाँ, ये गुड़ खा के क्या होता है? मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब गुड़ में क्या जहर है? चले कोई बात नहीं. इसी बात पे आपको एक गाना सुना रही हूँ. किसको डेडिकेट करेंगे?
1: मुझे.
0: किसको?
1: मुझे.
0: सिर्फ आपको?
1: हाँ, वो सिर्फ मुझे.
0: सिर्फ आपको डेडिकेट करेंगी. ओके, ठीक है. और मुझे ये बताइएगा कि और कुछ? थैंक यू. और हम प्ले कर रहे हैं इस वक्त. मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है जी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड हियर कम्स ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय शकीरा. हिप्स टर्न लाइव.

such a beautiful song. Aur hum move kar rahe hain ji again. And here comes another beautiful song. जो कि मैं प्ले कर रही हूँ जी, ये वाला गाना हम प्ले करेंगे, द ब्यूटीफुल सॉन्ग. थोड़ा सा अरेबिक बनते हैं, आगे गाना सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हमारा सेगमेंट बोलो तो माने. देखते हैं कौन कौन टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा कह के दिखाता है. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness. Chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: This program is brought to you by
3: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
5: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो. सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो. अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे. होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 खां शाम 5 ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे. एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण. वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-9984-63.
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: जगहों पर दस्तियाब हैं। दीवान फर्टिलाइजर एमए जिना रोड सांगर, कामिल एंड कंपनी सिंधरी फर्टिलाइजर स्टेशन रोड शहजादपुर और वाहिला ब्रदर्स काली रोड टंडो आदम।
1: आपके शहर मीरपुर।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

ओके कॉमेंट मुझे रिसीव हो रहे हैं। स्मार्ट किशोर कहते हैं आप थोड़ी सी अच्छी बन जाओ, जिंदगी भर हमारे दिलों पर राज करेंगी। अच्छा अभी क्या कर रही हूँ फिर मैं? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अच्छा अच्छी बनने की बात हो रही है तो ये बताएं कि बुरा क्या किया है मैंने, ऐसा क्या किया है जो आपको बुरा लगा है।

ओके फाइनली इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है. इसका मतलब हमारी चिटचैट होगी अब शाम को, और शाम को 4 से लेके 5 बजे तक ऑनवर्ड्स आपका और मेरा साथ रहेगा और नॉन स्टॉप रहेगा इस प्रोग्राम में. कल रहेगा दोबारा से 11 से लेके 1 बजे तक. सुनना मत भूलिएगा जिंदगी गुलजार है और बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है और ख्वाब पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लिव सिंपल बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

भुट्टो ईद उल अज़हा खां पहिरीं खुली वेंदी, टोल टैक्स बि ॿीणो थी वेंदो। शाहराह भुट्टो जे प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्यास सुमरो जो चवण आहे त शाहराह भुट्टो ईद उल अज़हा खां पहिरीं ट्रैफिक जे लाइ खुली वेंदी। मनसूबे में हिकु पुल तामीर हेठि आहे, पुल मुकमल न थी त मुतबादिल रस्तो ॾेई बि शाहराह भुट्टो खे ट्रैफिक लाइ खोलियो वेंदो।

0: सिटी में पुरस्कार नमूने गुमथियल नौजवान जो पंहिंजे ई घर जी पेतीअ मां लाश थे। रहमान उर्फ गुडो हकड़ो जो घर मां पेतीअ मां लाश मिलियो। संदसि भाउ राजा हकड़ो चवाए त कमरे में धप ते पेती खोली त भाउ जो लाश मिलियो। भाजाई गुलनाज ऐं ॿियो भाउ सईद फरार थी विया आहिनि। शिकायत रहमान खे ज़ाल ऐं भाउ क़तल करे लाश पेतीअ में बंदि कयो हो।
1: بلوچستان کے علاقے ہب میں نجی کمپنی جو مینیجر فرمزم تے قتل۔ پولیس چوڑا تھا فورن شعیب صدیق کے گولیوں ہنی قتل کیا۔
0: सखर जे इलाइक़े कंधरा में धाड़ेरनि सां मुक़ाबले दौरान शहीद थियल पुलिस अहलकार जी जनाज़े निमाज़ पुलिस हेडक्वार्टर्स में अदा। शहीद गुल मोहम्मद उर्फ गुलन तुनियो जी जनाज़े निमाज़ में SSP सखर, पुलिस ऑफिसर, अहलकारनि, वारसनि ऐं ॿियनि जी शिरकत। शहीद जो मढ़ जनाज़े निमाज़ भाउ दॿाणे ॻोठ में मिटीअ मां हवाले कयो वियो।
2: असां ग़रीबनि जी हालत रहम फरमायो। असीं ॿाहूं था ॿधूं इंतिज़ामिया खे, छा असांजा हिन मुल्क में असांजा बचा महफ़ूज़ न आहिनि। असीं हाणे चऊं त चऊं कंहिंखे, असां कंहिंजे तरफ़ ते वञूं? असां चई चई इंतिज़ामिया खे बार बार असां अपीलूं करे करे तकलीफ़ पिया आहियूं त ख़ुदा रहम मुंहिंजी मासूम जाला जेका आहे हुनखे बाज़ियाब कराए वञे। मुंहिंजी मासूम वई त आख़िरकार वई काॾे? ज़मीन जी वई आहे, को आसमान करी वियो? ख़ुदा रहम असीं बार बार अपीलूं करे करे थकिजी पिया आहियूं।
1: मासूम वाड़ी उजाला परवीन की बाजियाबी लाइ मेड़ में अगवा थियल मासूम वाड़ी उजाला परवीन के अगवा थन्दे 28 ढीं गुजरी वह वारसन सिविल सोसायटी की पुख हड़ताली कैंप जारी। पुलिस की जुड़ियल जीआईटी भी को नतीजो न डनो। उजाला परवीन सोलंकी की वालद प्राइमरी उस्ताद शमसुद्दीन सोलंकी धीएल है लुड़क लाड़े वेठो अथन। चवण है 28 ढीं गुजरी वह पर पुलिस रुगो खातरू कराने में पूरी है। न्याणी बाजियाब करा इंसाफ कया वे।
0: रतोदरो में स्कूल वेंदड़ नींगर मथां ट्रैक्टर ट्राली चढ़ी वई। रतोदरो बाईपास रोड ते नींगर अब्दुल मालिक ट्रैक्टर ट्राली हेठां अची फौत थी वियो। ड्राइवर गिरफ़्तार।
3: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।

0: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
3: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई, बरोज जुम्मू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
4: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की

0: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुना व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आप जानते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो इन प्रोडक्ट्स की खास बातें क्या होने वाली हैं या फिर ये प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप क्यों इस्तेमाल करेंगे या फिर क्या ऐसी बातें हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को फायदे के तौर पर मिलने वाली, ये बहुत ज्यादा वाली बातें आज के प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलेंगी। आप लोग जानेंगे और समझेंगे कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके जी, तो खूबसूरती की बातें होंगी आप लोगों के साथ साथ, मोहब्बतों के साथ साथ और आप लोगों के प्यार भरे मैसेजेस के साथ साथ। तो यस, यहाँ पर जितनी भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समातों लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। हाँ जी जनाब, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं तो जरा अपने हाल चाल भी बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के फहालत कैसे है आपकी हालत? उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना, वो खत्म हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मार दें तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं। तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे तीन बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और जरा एंजॉय करने के लिए रेडी शेडी हो जाइए। और प्रोग्राम में फुल ऑन मजे तो करेंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को खूबसूरती की बातें भी बताई जाएंगी। और अगर आप भी खूबसूरत होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती जो है वो हमेशा बरकरार रहे, तो आप लोगों ने क्या करना है या फिर आपको किस चीज की जरूरत है आपकी स्किन को, तो वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए भी रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा करते हैं, सारी बातें जो है ना वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं सबसे पहले। और आगा से प्रोग्राम किया जाएगा जी प्रोग्राम में, और हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा कसीदा मौजूद है। तो हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एक प्यारा सा कसीदा लगाते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या है जो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी जगह जो है हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। इसके साथ साथ प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, और ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना प्रोग्राम जो कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। ओके जी, तो यहाँ पर आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बताते जाएंगे, यानी कि अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं हमें भी पता होना चाहिए आप लोग अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोग कहाँ से हमें सुन रहे हैं, ये भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको तरीकेकार नहीं पता प्रोग्राम में शामिल होने के तो वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। और उसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, ये चीज भी बताते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ऐसा करेंगे जनाब कि अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, कनेक्टेड होना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज के प्रोग्राम में जो है ना आप ऐसा करिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर जनाब हमारा पेज है जी लाड़काना FM 88.8 के नाम से, और जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजिली हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आप लोग जैसे ही आते हैं पेज के ऊपर तो आपको हमारे प्रोग्राम की जो है ना वो लाइव पोस्ट मिल जाती है, बिल्कुल लाइव आपको पोस्ट मिलेगी, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा वाले लोगों को बताइए और बहुत ज्यादा वाले लोगों को मेंशन कीजिए ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है ना बात की जाती है और आप लोगों को ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि आप लोगों की खूबसूरती के लिए है। और चाहे लड़के हो लड़कियां हो, सारे लोग ही इस्तेमाल करते हैं, अपनी खूबसूरती को सिर्फ बढ़ाते जाते हैं। तो बिल्कुल जी, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक के अलावा आज हम कॉलें भी लेंगे, बिल्कुल जी कॉल्स भी होंगी प्रोग्राम के अंदर, और कॉल्स जो होंगी तो वो 2 बजे के बाद होंगे, ठीक है। तो कॉल्स पर आज आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा सा सेगमेंट होगा, तो आप जरा सेगमेंट के लिए खुद को रेडी कीजिए। और उसके साथ साथ जो है अच्छा, पहले से नहीं बताऊंगी कि सेगमेंट में क्या होने वाला है, क्योंकि भाई अगर पहले से बता दिया तो सस्पेंस जो है ना थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो बस आप जरा रेडी रहिएगा और उसके साथ साथ जो है आप हमें 8821 और फेसबुक पर तब तक जो वो ज्वाइन करते जाइए। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही मजे मजे के प्रोडक्ट्स शामिल है, जैसे कि व्हाइट एश की लवली ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और व्हाइट एश की जो लवली क्रीम है ना, ये आपके हर स्किन टोन के लिए, ये तो भाई ऐसा समझ लें कि आप लोगों के लिए जो है ना क्रीम करेगी आपकी खूबसूरती में। तो व्हाइट एश की लवली क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ साथ व्हाइट एश की ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है, और उसके अलावा व्हाइट एश का ब्यूटी सोप आप लोगों के लिए मौजूद है, और उसके अलावा क्या है व्हाइट एश की विटामिन सी का जो फेस वॉश है ना वो भी आप लोगों के लिए मौजूद है, और साथ साथ आप लोगों के लिए व्हाइट एश का जो है ना लोशन भी मौजूद है, एंड व्हाइट एश का हेयर रिमूवर लोशन भी मौजूद है, और साथ साथ डॉक्टर पिंपल का ट्यूब भी मौजूद है जो कि व्हाइट एश वालों का है। और ये भी जनाब डॉक्टर पिंपल नाम से आज ट्यूब है ना, ये आप लोगों की एक्नी के लिए, तो अगर एक्नी को खत्म करना चाहते हैं तो आप व्हाइट एश का जो डॉक्टर पिंपल ट्यूब है ना वो जरूर परचेज कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, बहुत ही शानदार से रिजल्ट्स के साथ आप लोगों के लिए हर जगह अवेलेबल करा दिए हैं। नहीं भी मिल रहे तो उसका भी हल आप लोगों को बताया जाता है कि आप नंबर के ऊपर रابطہ करके अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो बहुत ही इजीली मिलने वाले ये प्रोडक्ट्स, आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से

मात लीजिए और परचेज करते जाइए। ओके जी, हिदायतुल अहमदानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम करते हैं। नूर सिंतनियो भाई हमें लाड़काना से सुन रहे हैं, वेलकम भाई जान। शहबाज हमारे साथ मौजूद है, हेलो शहबाज। अजीर खोसा हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम जी। और उसके अलावा जाहिद अली बुर्दी हमारे साथ मौजूद है, वाले हुसैन हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आशिक जमान वालेकुम हमारे साथ मौजूद है। और चाचा खालिद कहते हैं कि आज घर वालों के ताने नहीं सुने, सामने रखा हुआ है। इस टाइम आप व्हाइट एस लवली क्रीम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, करती रहिए। और किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय, हाँ स्मार्ट हाजिर है अपने लबों पर स्माइल लाने के लिए, माशाल्लाह जी, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है। और वफा मीर मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है, आप हमें सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं ये भी आप मुझे बताते जाइए। और इकबाल आशारी हमारे साथ साथ हैं, जनाब इकबाल भाई आपको भी वेलकम करते हैं। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने ना लाइक और शेयर करना होता है, ठीक है, तो लाइक और शेयर कीजिए। वीरू मल मेंगवार हमारे साथ मौजूद है, नाइस यो, थैंक यू। उदास लड़की आ चुकी है, सलाम उदास लड़की, कितनी तबीयत होगी, शोके है, यस आप बताएं जरा अपना। और दर्द दिल भी आ चुकी है प्रोग्राम में, दर्द दिल क्या कहती है। अच्छा वालेकुम अस्सलाम जी, दर्दी दिल आपको भी वेलकम कहती है, मैं हूँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा

0: आओगे जी प्रोग्राम में, आप हमें ज्वाइन करते जाइए, मजे करेंगे, आप लोगों के साथ साथ बातें होंगी और आप लोगों को बताए जाएंगे जनाब खूबसूरती के राज। यहाँ पर टाइम हो जाता है, हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं, तब तक हमारे साथ मौजूद रहिएगा। और जी स्किन ब्यूटी शो, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, ठीक है, यही बैठिएगा।
1: मोरू नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सक्खर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए FM 88 नेटवर्क।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati juzan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Ab aapki khubsurti ka fan. Bright Age Beauty Cream.
5: This program is brought to you by
6: Jadeh maa paan jo khyal rakhan diya hai ta sehat naslan tai halandi hai. Hi pegam Kash Foundation and Canadian Government je tarfa pesh kayo vayo.
7: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ है अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सबनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 5 AM ताई बरोज जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-9984-7063।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. मौजूद है हमारे साथ सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. ओके जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों का जो है ना प्लीज नोटिस करिए कि आप वो एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए. ऐसा ये होगा कि आप क्लियरली जो है ना वो चीजें समझ जाएंगे और आपको आराम से सारी बातें समझ भी आ जाएगी. तो बिल्कुल आज आप लोगों के लिए जो है मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि टाइम इस मरतबा जो होता है यानी कि पहले वाले घंटे में थोड़ा सा ज्यादा हमें लग रहा होता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जो कि ज्यादा प्रोडक्ट है. तो ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में जो है आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब आप व्हाइट एज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं ना, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स मौजूद हैं. तो व्हाइट एज का अगर आप फेस वॉश लगाते हैं, जैसे कि व्हाइट एज का विटामिन सी के साथ साथ फेस वॉश, और विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है जो कि आप लोगों की खूबसूरती को जाहिर सी बातें बढ़ाएगा और साथ साथ जो है ना और उसके अलावा आप हमेशा क्लियर और ब्यूटीफुल बनाए रखेगा. अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, तो आप व्हाइट एज का फेस वॉश जरूर ट्राई कीजिएगा जो कि विटामिन सी के तैयारशुदा है. उसके अलावा अगर आप व्हाइट एज का ब्यूटी सोप ट्राई करते हैं, तो व्हाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना आपकी स्किन को हमेशा फ्रेश बनाए रखेगा, आपकी स्किन को जो है ना वो फेयर करेगा, आपके चेहरे पर जितने भी साइड इफेक्ट हैं सब चीजों से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करेगा और आपके चेहरे पर जो रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ये सारी चीजें खत्म करेगा क्योंकि व्हाइट एलोवेरा और एवोकाडो से तैयारशुदा है. उसके साथ साथ अगर हम बात करें व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये एक जदीद और स्किन केयर प्रोडक्ट है जो जल्द को तरोताजा और नरम बनाता है, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी पहले नंबर पर है. और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों को पता है कि एलोवेरा और एवोकाडो से तैयारशुदा है. दोनों चीजें आप लोगों की स्किन के लिए फायदेमंद है और उसके अलावा आप लोगों की स्किन को महफूज बनाए रखती है. और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर झुर्रियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, स्याह धब्बे हैं, तो उनको कम करती है, आपकी स्किन जो है ना यानी कि आपकी जो जल्द है वो साफ और रोशन बन जाती है. इसमें कुदरती अज्जा है जो कि एलोवेरा है जाहिर सी बात है और एवोकाडो भी है. तो आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा. और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो आप इसे रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा. इस्तेमाल करने से पहले आप अपना लाजमी कीजिएगा जो कि आप व्हाइट एज ब्यूटी सोप एज के जो कर सकते हैं, तो जरूर से आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा. तो ट्राई करके देखिए फिर ही बताइए कि भाई जान आप लोगों को रिजल्ट्स कैसे और कितने अच्छे मिले. उसके साथ साथ हम जरा मूव करते हैं मेरे फेवरेट वाले प्रोडक्ट की तरफ, आप समझ तो गए होंगे. तो बिल्कुल जी, मेरा जो फेवरेट वाला प्रोडक्ट है वो व्हाइट एज लवली क्रीम है. और व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना जनाब, ये इतनी जबरदस्त है, रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन्स के साथ साथ तैयारशुदा है, जिसके अंदर 30 विटामिन कैप्सूल मौजूद है. और 30 विटामिन कैप्सूल मौजूद है, जैसे कि इसमें हर तरह का विटामिन मौजूद है, विटामिन B3 है, विटामिन सी है और विटामिन ई की ताकत के साथ साथ आपकी जल्द को निखार देगा और बेहतरीन आपकी जल्द को खूबसूरतियां भी देगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है. जैसे कि व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि अगर आप धूप में लगा रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज का टेंशन नहीं होगा कि भाई हमारी चेहरे पर जो है ना वो धूप के मौजू असरात आ जाते हैं, हमारी चेहरे पर जो धूप पड़ती है तो उसकी वजह से हमारी स्किन और ज्यादा जो है ना डल हो जाती है. बल्कि व्हाइट एज लवली क्रीम आप लगाकर अपने काम भी कर सकते हैं, धूप में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन ऐड की गई है, आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा, आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करेगी और आपको हमेशा जो है ब्यूटीफुल लुक भी देगी. तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप ट्राई करके देखिए, आप हर एज में लगा सकते हैं क्योंकि ये एक लवली फेयरनेस क्रीम है, तो आप जरूर लगाइएगा. उसके साथ साथ जो है ना आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. और साथ साथ जिन लोगों की स्किन के ऊपर दाने काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, एक्नी का मसला है, एक्नी की वजह से आप परेशान बैठे हैं, तो जनाब डॉक्टर पिंपल नाम से ये ट्यूब आपको मिल जाता है. डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर से जाते हैं, ट्यूब परचेज करते हैं, ये एक्नी ट्यूब ही आप लोगों को मिल जाता है. और अगर आप इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, तो जनाब आप लोगों को पता हो कि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है. आपके चेहरे पर अगर एक्नी मार्क्स हैं या फिर आपके चेहरे पर कोई भी जिद्दी सा दाना है या फिर आपके चेहरे पर ब्लैक पोर्ट्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो या फिर

आपके चेहरे पर ऑयल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इन तमाम तर चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए, इन तमाम तर चीजों को आप लोगों से प्रोटेक्ट, आप लोगों जो कि व्हाइटिश वालों का ही है, तो डॉक्टर पिंपल नाम से आप इसे जो है ना वो परचेज कर सकते हैं कहीं से भी जाकर। आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए और वहां से नाम लेकर तलब कीजिए, और साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो आप डायल कीजिए 03 15 799 0595। ये नंबर डायल कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम तर प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते जाइए। तो व्हाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए, ताकि आप वहाँ से जाकर इजीली परचेज कर सकें। आपके लिए भी आसानियाँ, आपके आसपास के लोगों के लिए भी आसानियाँ।

ओके जी, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार शुदा है और आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है, तो आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा।

जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, शेयरिंग जो है ना वो नहीं रुकनी चाहिए, शेयरिंग करते जाइए। और साथ ही साथ जो है ना आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए जो सेगमेंट होने वाला है वो जरा थोड़ा सा आप लोगों को पहले से बता देती हूँ, वरना आप आकर कॉल पर ये भी टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमने तो टॉपिक सुना ही नहीं है, हमने तो नहीं पता कि आप सेगमेंट में क्या कर रही हैं। तो ये चीजें जब आप टाइम वेस्ट करते हैं ना तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अगर आप सेगमेंट पहले से तो कॉल करेंगे तो ये टाइम जो है ना वो थोड़ा सा बच जाएगा, आप सेगमेंट के ऊपर जो है ना वो मजे कर सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम का जो सेगमेंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि सेगमेंट का नाम है जनाब सच बोलना मना है। वैसे तो हम ये कह देंगे झूठ बोलना मना है, लेकिन सेगमेंट में जरा हम थोड़ा सा उबतो कम ना कहीं थी सके तो सेगमेंट हूँ सच बोलना मना है। ठीक है, इन में माँ का मुख्तलिफ सवाल पूछंदम। ठीक है, आई तव्हां छा कंदा, तव्हां उन जो जवाब ॾींदा, पर सच न हुजे उहो। ठीकु आहे, सच न हुजे उहो, कूड़ हुजे। ऐं ॾिसंदासीं वैसे त ॾिठो वञे त माण्हू कूड़ में ॾाढे, सो बिल्कुलु ही सेगमेंट मां उन्हनि माण्हुनि ज़हन में रखी करे ही सोच। त ईअं बि थी सघे थो त तव्हां प्रोग्राम में अचो ऐं ही जेको सेगमेंट आहे कंदासीं, ऐं मां तव्हांखां मुख़्तलिफ़ सवाल पुछंदमि, उन्हनि ते तव्हांखे जेको जवाब ॾियणो आहे उहो तव्हांखे ॾियणो आहे सच न। सही आहे, सच बोलना छो त मनाए। वैसे ये फनी वे में होने वाला है तो उसे सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, आपके एरिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा आप मुझे ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट आप पहले से सुन लीजिए ताकि ऐसा न हो कि कॉल पर आकर बोलें कि असांखे तो खबर ही कोने। सेगमेंट के फॉलो कर, यहाँ पर अरीबा हमारे साथ मौजूद है। अरीबा के हो गया जी, बहुत शुक्रिया। कश्यप हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, आप ही आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून, दुआ करो आज मेरी कॉल लग जाए। बेस्ट फ्रेंड आरजे सिद्रा मुस्कान आप ही। अच्छा गाना कौन सा सुनेंगे बताएं जरा। उसके अलावा हैं जी हमारे साथ चाचा खाले जुड़े, जो कहते हैं कि एक सॉन्ग आपके पैनल पर काफी दिन से पड़ा तड़प रहा है। ये बात वैसे है, कितने दिन हो चुके ये गाना हमने नहीं सुना, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि ये वाला गाना हम लगाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, ठीक है जी बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ हैं, क्या कहते हैं, कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, दुनिया को बताकर क्या करना, तुम खफा भी अच्छे लगते हो फिर तुमको मनाकर क्या करना, तेरे दर पर आकर बैठे हैं अब घर भी जाकर क्या करना, दिन या से अच्छा गुजरेगा फिर तुमको बुलाकर क्या करना। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है गुलाम शबीर तुनियो भाई, आप ही सॉन्ग तो बनता है आज हमारा मंजू सकरानी की आवाज में दिल में अज। ओके ओके चले, मां गानो समझी हम तां केड़ो गानो चयो आए, सो मां कोशिश क्या थी बिल्कुल तमाचो गानो हलाइंदासी। हिते एकड़ो मस्त गानो लगायो थम लिस्ट में, सो ही वारो सॉन्ग भी बुदंदासी, ये गानो तमाखे वणी वेंदो समझो था, न वणे त पैसा वापस सही।

ही प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. हाँ जी, ये बात तो है. अच्छा, कश्यप कहती है कि आप ही आपको सराइकी आती है. अगर आती है तो मुझसे सराइकी में बात किया करें, अगर नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी. जी मुझे सिखाइए, वैसे मुझे आती नहीं है.

0: जी बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप एंजॉय करें, और साथ साथ प्रोग्राम में जी इतना प्यारा और इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको पता है कि भाई आपकी स्किन कैसी है, तो उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, लेकिन आपने अप्लाई करना है। वैसे भी कहती हूँ हमेशा कि आप अपनी स्किन के हिसाब से ही प्रोडक्ट का इंतखाब किया करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई फला इंसान ने मुझे बताया है और ये प्रोडक्ट अगर आपकी स्किन के ऊपर सूट ना भी करे तब भी आप लगा रहे होते तो ऐसा मत किया करें। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, तो आप जो है ना वो जो इतने हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिनके ऊपर भरे होते हैं फार्मूले, वो जरा आप थोड़ा अवॉइड किया करें, क्योंकि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाए। बल्कि आप उन प्रोडक्ट्स की जानिब जाया करें जो कि लाइट वेटेड हो और नॉर्मल से फार्मूले उसके अंदर एड किए गए हों, और वो जो है ना आप लोगों की ऑल स्किन टाइप के लिए हो। तो जो प्रोडक्ट्स आप ना यानी कि जो ऑल प्रोडक्ट आप लोगों ने इस्तेमाल किए आपकी स्किन जो है ना वो हम रहती ही आपकी शक ग्लो करते हैं। व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम है जो कि बिल्कुल लाइट वेटेड फार्मूला है, ये है लड़के लड़कियां सभी लगा। से भी ज्यादा हम बात करें व्हाइट एज लवली क्रीम तो ये तो भाई कमाल का प्रोडक्ट है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये नाइट में भी आप लगा सकते हैं, डे में भी लगा सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, या फिर आप स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, तो हर एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। कितना ही कमाल का प्रोडक्ट है, तो जरूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही प्यारा गाना है, और साथ साथ ये हमारे साथ मौजूद है बाजी। क्या हाल है आपके बाजी? अल्लाह आपको सलामत रखे। सिकंदर अली जावरी हैं, अरसलान अली जावरी हैं, कोट रोशन अली जावरी अली आबाद से हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। नूरी सिंह भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम नूरी सिंह। सॉन्ग की रिक्वेस्ट है ओके अल्ट्रा, ये गाना आपने मुझे डेडिकेट कर दिया, चलिए हम सुनेंगे फिर सोचेंगे कि ये मुझे डेट या नहीं। कहते हैं ब्यूटी क्रीम मैंने परचेज कर ली है, क्या बात है अब्दुल्ला भाई, इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे बताइएगा फिर आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ है, तुम जितनी बार मना ले बस तुम अपनी के बाद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है। तो भाई को वेलकम करते हैं। इरम वालेकुम अस्सलाम, कहते मेरी प्यारी दिलबर दोस्त शो नाइस है, थैंक यू वेरी मच इरम। हाँ जी सिया मान भी जा पारा की, मैं जितनी बात करती हूँ अद्धा हिस्सो रह लाए सूरती अध स्टेट ते पहुंचायो सब माण मुखे बुधो पया तव सब जेको आ न व्हाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमाल कोई ता मुखे पाण बुधाए त बाजी असां के हेड़ो रिजल्ट, तो तवा जरूर। और संजय जयपाल भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। आयुष मामन गोला भाई,
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
2: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन दिया है, तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है।
0: हाँ जी, आप बिल्कुल ना जाइएगा कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं आप बैठे रहिए प्रोग्राम।

जो समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान गेम खेली रहियो आहे पर हाणे खेसि घणी ढर न ॾिनी वेंदी। ईरान जो रचायल यूरेनियम मलबे हेठां दफ़न आहे, जंहिं ताईं जल्द पहुची वेंदासीं कॾहिं बि नाहे चयो त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्यवाही ख़तमु थी वई आहे। कुझु हदफ़ रहियल आहिनि, ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था। कॾहिं बि कंधु न झुकाईंदो, ॻाल्हियुनि जो मक़सदु शिकस्त या पोइ ते हटणु नाहे। ईरानी सदर मसूद पज़िशियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे जवाब ॾींदे चयो आहे क़ौम जे हक़नि जी हासिलात ऐं क़ौमी मुफ़ादनि जो दिफ़ा आहे। तेहरान जो मक़सदु रुगो जाइज़ हक़नि जो तहफ़ुज़ करणु आहे। अमेरिका खे मुनासिब तजवीज़ूं ॾिनियूं हुयूं ईरानी परॾेही वज़ारत तर्जुमान इस्माइल अमेरिकी क़दमनि सां ख़िते जे इस्तेहकाम ऐं सलामती खे सख़्तु नुक़सान पहुतो आहे। सूरतहाल वधीक ख़राब थी रही आहे। विढ़ण ते मजबूर कयो वियो त ईरान ज़रूरु विढ़ंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इट्स 2 PM दिस टाइम चेक।

0: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो बहरी इस्तेमाल में फर्क महसूस करयो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: This program is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, सो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितने अच्छे प्रोडक्ट्स और कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम जरा बात करें अभी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और साथ में डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश मिल रहा है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए ये सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप बिस्मिल्लाह कीजिए। पहले आप इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, डी स्किन का फेस वॉश, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन की ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन की ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताते चलूं, यहाँ पर जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का

0: इस्तेमाल करते हैं ना, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती सिर्फ बढ़ेगी। और इसके अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद है, माइक्रो बीट्स भी मौजूद हैं, और इसके अलावा ये आप लोगों को सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से जो है ना बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट देने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को कहीं से भी जाकर ना आसानी से आप जाकर परचेज कर सकते हैं, इजिली आपको मिल जाएगी। और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ दो रातें आप लगाते हैं, आप लोगों को वाजे नतायज जो है ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जदीद आपकी जो है ना स्किन जो है वो खूबसूरत हो जाती है क्योंकि इसके अंदर जदीद अज़ा शामिल है। अगर आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं आजकल, तो ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है ना, ये उन तमाम तर चीजों को देखते हुए तैयार की गई है। क्योंकि ये जो एक ऐसी क्रीम है जिसके अंदर आप लोगों को विटामिन ई बीट्स मिल रहे हैं, और ये जो विटामिन ई बीट्स होते हैं ना, ये आप लोगों की स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को जो है ना डीपली क्लीन करने के साथ साथ डीपली मॉइस्चराइज करने के साथ साथ डीपली ग्लोइंग भी बनाते हैं। तो आप देखेंगे, आपको महसूस होगा ये चीज कि आपकी स्किन जो है ना वो अंदर से ग्लो होती जा रही है। और आप जब दो रातें लगातार इस्तेमाल करते हैं और वैसे ही आप लगाते जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। तो आपके ऑल स्किन टाइप के लिए लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जाएंगे। उसके अलावा जब हम डी स्किन फेस वॉश की बात करते हैं, वॉश है ना ये भी बहुत ही ज्यादा कम, ये जब आप देखते हैं तो इसे आपको जो है ना वाकई, इसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, साथ में डी स्किन का जो फेस वॉश है वो लगाते हैं, इसके अंदर सीरम और स्किन को जो है ना वो ट्रीट करता है, वो जितनी वो उसको भी कंट्रोल करेगा। और आप लोगों की चेहरे की स्किन जो है ना अगर ड्राई रहती है काफी ज्यादा, तो ड्राइनेस जो है ना वो भी कम कर देगा। तो आप जो है डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कीजिएगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और क्लीन क्लीन हो जाएगी और ग्लोइंग हो जाएगी। तो ट्राई करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते जाइए और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। ओके जनाब, से प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी आप लोगों की कॉलिंग का सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे, और कॉलिंग सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले ये चीज आप लोगों को, आज के प्रोग्राम होगा उसमें आप लोगों के लिए सेगमेंट है सच बोलना मना है, ठीक है। और सच बोलना मना है सेगमेंट में मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ में सवाल पूछूंगी। तो आपने क्या कहना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो मुझे जवाब देना है वो सच नहीं होना चाहिए। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि मैं आप लोगों से सवाल कैसे जो ना वो पूछने वाली हूँ। इससे जो है ना वो हम ये चीज समझ पाएंगे कि आप सच बोलने में एक्सपर्ट हैं या फिर झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। कई बार दवा ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग सच बोलते हैं लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि ये अगला इंसान सच नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं लेकिन लग नहीं रहा होता कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो इतनी महारत से झूठ बोल रहे होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सेगमेंट है जनाब सच बोलना मना है, और यहाँ पर जो है हम कॉल्स आप लोगों की पिक करने वाले। कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88। आप भी कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर ऑन हो चुका है और लाइन बिजी होने वाली है, सो आप ट्राई कीजिए। फर्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम, कैसे मौजूद है? ओके जमालुद्दीन भाई, छाला प्रोग्राम बताओ प्या। अच्छा मुख्य बुधा तो तुम्हारा सेगमेंट चलाए, तैयार आयो सेगमेंट बुधो आ अच्छा सेगमेंट यो बात अज तमा खा मा जेको एकडो सवाल पछंदम एक मानो खा एकडो सवाल हुंदो ई तामो के उन जो सवाल जो जवाब जेको ने वो दींदा त तमा कोशिश करतो वो सच न होजे। अच्छा सो तमा खा मा जेको सवाल पुछाती वो सवाल जो यो थिंदो त तामो के बुधा त ता कदे चोरी के बेजी प्रोडक्ट इस्तेमाल कई आ है? तव्हां कॾहिं चोरी कंहिं ॿिए माण्हू जी प्रोडक्ट इस्तेमालु कई आहे? उहा प्रोडक्ट कहिड़ी बि थी सघे थी, कॾहिं तव्हां कंहिंजो चोरी कोई प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो
1: आहे?
0: तव्हां त हारजी विया, तव्हां त सच ॻाल्हायो, कूड़ ॻाल्हाइणो हुयो। हा न मज़ो त तॾहिं ईंदो न। चलो दोस्तनि खे यादि कंदा या बसि गुड बाए? ओके वालेकुम अस्सलाम। जमालुद्दीन भाई हमारे साथ मौजूद है, शिकारपुर से कॉल करते हैं माशाल्लाह, और इनका आज गाना हमने नहीं सुना, बस मैं चाह रही हूँ कि आज हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स पे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप जो है ना कोशिश करें कि आप जो मैं आपसे सवाल पूछे उसका जवाब आप थोड़ा सा ना झूठ वाला दीजिए, तो सच बोलना मना है सेगमेंट है, हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉल पे करेंगे।

0: அதான் பாரன் கெச்சப் கராய் போ கால் கோயோ அகர கணி கிரி கிரி போ கால் கோயோ காலிங் நம்பர் 0333221388 ஹி வாரி கால் வட்டு தாய் டு சுந்த காலர் கே ரெஸ் சகட் மாஜூத ஹே ஹலோ
1: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
0: வாலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அது காடாயோ சந்திர நெக்கதோ ஆயி
1: மாஷாலா
0: சிகாபுர் மே ஆயோ தானியா மன்னா ஜி ஜி அல்ஹம்துலில்லாஹ் தாமதா ठीक आयो
1: अलाह
0: का जायसन सुना तो वाले कौन है हां छो ना सुना तुम बाकी ये छो चो
1: तो यो कारण चंद्र निकतो आ माकेर
0: ता फारूक भाई जी जी बिल्कुल न साल का थोड़ो घट थियो हुंदो
1: अच्छा
0: ता किथे घुमायो बुधाय तो सही राज़ी कयो
1: बाक़ी
0: राज़ी थी वेंदो मूंखे ॿुधायो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो
2: It's 2:30 PM. इतने चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
1: जी जी
0: चलो पर हाँ तुम वाइट एज भी लगा जो न जो प्रोडक्ट अव उन भलो अव जी ठीक अलहमदुलिल्लाह तुम बुधायो खे लगो पे जी बिल्कुल बिल्कुल इलाही गाला पर हाँ टाइम थो अस ब्रेक वी वही कहीं तुम जरूर ट्राई कजो कॉल लगी वी तुम्हारी भी कहने दोस्त की याद कर चलो वालेकुम अस्सलाम थैंक यू वेरी मच फारूक भाई आपकी कॉल लगी आपने कॉल करी बहुत ही अच्छा लगा अपना ख्याल रखा करे और उसके अलावा यहाँ पर ॾिसो बाबा असांजा लिसनर्स केॾा माशाल्लाह चाला आहिनि उन्हनि खे सभु ख़बर पइजी ओके सो तव्हां प्रोग्राम में असांखे जॉइन करे सघो था टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था उन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटींदासीं तव्हां कॾहिं न वञो हिते वेठा हुजो ॿुधंदा और असांजो प्रोग्राम पूरे पूरे 3 बजे ताईं ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटांदी सो हिते वेठा हुजो

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हाँ हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वो है होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 5 AM तई बरोज जुम्मो मोकल है एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन मशोरे जे लाए 0327-99-84-760
2: पहेंजो शहर पहेंजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: GFM 90.8
4: सब मुझे जिंदगी जो ही छोटी एल्बम

है जिनकी आवाज टेलीविजन है थर प्रोडक्शन पेश करे थी भाई। तमाम घणो एहसानमंद शुक्रगुजार आया उन दोस्तों जो जे अड़े हालात में बेचारा खास करे बहराड़न को इतने आया है वे दोस्त जी कराची को पांजा घर छड़े इतने आया है। अल्लाह साईं असांजे सिंध ते रहम ऐं करम करे। जड़ो हाल है इन एल्बम जी सिलेक्शन जमा खास कैली थी है जो म्यूजिक है वो उस्ताद शाहिद बजमी दिनों है पहरियों दफो। जड़ो हाल है मानुन के तो घणी शिकायतें होंदी आहिनि सदाई दुख जा गीत हुंदा आहिनि पर अल्लाह साईं ठायो अड़ो है तो भाई तोखे गायणो इहो ही आ। पर दुख भी इंसान जी जिंदगी जो हिस्सो है तकरीबन 80% मानुन के कें न कें जो दुख हुंदो आहे।

बताओगे जी, तो अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमें बता दिया करें, आप लोगों की खूबसूरती के लिए और आप लोगों के हुसन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती रहे तो भाई जान आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो अज्जा मौजूद है वो बिल्कुल नेचुरल है। तो आप ट्राई करके देखिएगा, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूम लीजिए, आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो नंबर होगा ना उसे आप डायल करेंगे। और नंबर कौन सा होने वाला है तो जनाब नंबर है 03 15 799 0595। ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आप इजीली परचेज करते जाएंगे। ओके जी, तो प्रोग्राम में यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो, ये आप लोगों को मैंने पहले बताया तो बिल्कुल वही तरीकेकार हैं कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ना, आप रात के टाइम, ऐसा है कि जो ब्यूटी क्रीम होती है ना वो जाहिर सी बात है वो नाइट क्रीम होती है, तो आप उसे रात के टाइम इस्तेमाल किया करें। लेकिन रात के टाइम इस्तेमाल करने से पहले जो है ना आप अपना फेस वॉश लाजमी कर लिया करें। अगर आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल जी आप अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कीजिए और उसके बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर रात के टाइम अप्लाई कीजिए।

0: ओके जी, तो हम पता नहीं कहाँ थे. ओके जी, तो टाइम जो है मैं देख रही हूँ, तो टाइम बहुत ही जल्दी और तेजी से गुजरता जा रहा है. आप लोगों के मैसेजेस भी हैं, उनको भी हम शामिल प्रोग्राम रखेंगे. और इसके साथ साथ जो है ना, पैनल पर कुछ मैसेजेस हैं, तो उनको जरा मैं जल्दी से रीड कर लेती हूँ. ये हमारे साथ मौजूद है इमरान अली बिरोही लाड़काना से, लिखते हैं, तुम जितनी बार उठोगे हम उतनी बार मना लेंगे ए दोस्त, बस तुम अपनी मोहब्बत में किसी को शामिल. मैं बड़ी अच्छी बात बोली. और ये हमारे साथ कश्यप कहती है, कश्यप आप ही ये गाना सुनाइएगा. जी जी बिल्कुल, गाना सुनाएंगे, आपको नाराज नहीं करेंगे. नाराज तेकू नहीं करना. और कश्यप कहती है, आप ही तेकू मेकू क्यों नहीं आती आपको? भाई तेकू मेकू नहीं आती मुझे, चावन आता है बस. और मैंने कोशिश की है शायद, पर मैं सीख नहीं पाती हूँ. और शायद ऐसा है कि मैंने दिल से कभी ट्राई नहीं किया. और इसके अलावा जो है, अच्छा ये सलाम मिस यू, मैं आके फरमान पर वाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे पहले ओके. इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है. ओके जी, ओके बिल्कुल, आप मेरे फरमान पर यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. और अगर रिजल्ट्स ना मिले तो मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको बताऊं कि आप कहां पर गलती करें कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. इरम कहती है, मां घोर थिया माई डियर दोस्त जानी सिद्रा, व्हाइट एश एंड डी स्किन के प्रोडक्ट्स देखने में तो बहुत नाइस है जी. बिल्कुल, देखने में भी नाइस है और लगाने में उससे भी ज्यादा नाइस है, तो आप ट्राई कीजिएगा. कश्यप कहती है, मेरी कॉल नहीं लग रही, ट्राई कीजिए, मेरी जान लग जाएगी. आपने अच्छा हुआ कॉल्स का याद दिला दिया. और ये हमारे साथ आज सिद्रा, आप कभी ना अपनी आवाज में हमें कोई गाना सुनाए, हमारी ख्वाहिश है. लाड़काना से इमरान अली बिरोही भाई, मैं अपनी आवाज में आपको गाना सुनाऊंगी, लेकिन कब सुनाऊंगी ये मुझे नहीं पता. जयपाल भाई कहते हैं, जयपाल का सलाम, हाउ आर यू, वेरी नाइस लवली ब्यूटी क्रीम. और कहते हैं, एंड सोप गुड ऑल प्रोडक्ट्स व्हाइट एश एंड डी स्किन एंजॉय ब्यूटी स्किन सुपर रिजल्ट्स, आप सब एंजॉय. थैंक्स जयपाल भाई, आपको शुक्रिया कहते हैं वेलकम के साथ साथ. आप हमारे साथ मौजूद है, बताएं जरा कौन सा प्रोडक्ट आपने ट्राई करके देखा. और इसके साथ साथ हम यहाँ पर कॉल की जानेब आते हैं, कॉल्स लेंगे जी. लास्ट लिंक है और टाइम इतना तेजी से गुजरता है, तो कॉल्स की जानेब आते हैं ज्यादा से ज्यादा. आज मैं ना ये सोच रही थी कि मैं बहुत ज्यादा वाली कॉल्स लूंगी, लेकिन ऐसा है कि टाइम इतना तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता. ओके जी, कॉलिंग नंबर 0333-21-322-88. सो नेक्स्ट कॉलर पिक करते हैं, देखते कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम
0: सलाम, केरस सगर मौजूद आ. आवाज तां जो कटे जो छाना लो बुदायो. लाड़काने का कॉल कई आ. ओके, जो है मुख्य बुधाए प्रोग्राम बुधन आयो असो. रहमतपुर में ना ही आई, तुछा करायो आ.
1: हाँ, तो कौन है?

0: चलो तां जे लाए सा रहमतपुर में अवेलेबल कराइंदा से शायद कंदो तां भी चलो जबरदस्त ठीक आ बिल्कुल अवेलेबल कराइंदा सी आई मुता तां मके यो बुधा ता ताके सने प्रोग्राम ने नालो छी दो हेलो अदा काडे बजी वयो बजी वयो दो बस यो बुधाना ता रहमतपुर में कोनती मिलेवा हाजिर सई अवेलेबल कराइंदा यो हुकुम कयो Okay, calling number 0332123221288. Next caller. Hello, assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam. Shah kanoni kambar ka sana hai. Gopang se bolaya.
0: Gopang aisa sagad maujood hai program budho pya.
1: Ji ji bilkul budho pa program.
0: Acha mukhe badhayo to tumha program to nalo ache to tumhake. Okay, zabardast. Istemal karne bare mein socho to. चलो सेगमेंट बुधो अव अज सच बोलना मना अव सच गाल तो मना फासी वेंदो सवाल पुछा तवा का अच्छा टॉपिक तवा जे लाए सवाल यो आए मुट त कदी तवा पाजे अखि जा डार्क सर्कल लिकाने लाए सनग्लासेस यूज किया तवा बार वनी ले के तवा सनग्लासेस पाते पर हालाके सच गा तवा जे अखि जे ठा डार्क सर्कल्स अची वे आन ये कने कयो त
1: यूज कया न
0: ता यूज कया माने ये हाय या न
1: जरूरत नहीं है टॉपिक को फॉलो करयो
0: वेरी नाइस वेरी नाइस केने दोस्तन की याद कंदा
1: प्यारो
0: नौजवान साथी
1: प्रोग्राम
0: ओके थैंक यू

0: हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉलर की जानिब आएंगे. कॉलिंग नंबर 0333212288 ये वाली कॉल पे करते और देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है. अच्छा नंबर वाकई एतरो जिकवा न हो थी वेंदो आहे यानी के मसरूफ थी ना तो तव्हां जो अगर मां कॉल्स पिक करण लॻंदी आहियां त पोइ थोरी डिस्टर्ब थी वेंदी आहियां. सो कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम. केर असां सां गॾु आहे? हेलो हेलो आवाज़ अचे थो? वालेकुम अस्सलाम. केर असां सां गॾु आहे? किथां कॉल कई
1: आहे?
0: अलीज़ा किथां कॉल कई अथव? अलीज़ा ओ माई अॼु अलीज़ा थोरो नेटवर्क ख़राबु आहे. अलीज़ा जो न बल्कि अलीज़ा जो मोबाइल जो नेटवर्क ख़राबु आहे. ओके सो अलीज़ा तव्हां ॿीहर ट्राए कजो तव्हांजी कॉल मिली वेंदी. सही आहे असां तव्हां सां ॻाल्हाइणु चाहींदासीं. ओके हुन खां अलावा हीउ सॉन्ग जंहिंजी फरमाइश असांखे असांजी कशफड़ीअ कई कशफ चए पई गानो न लाईंदे त नाराज़ थी वेंदी. महसूस नाराज़ तव्हांखे न आहे कंदासीं छोकिरियुनि सां लाइ शुद लाइ न बाबा सभु हिकु जहिड़ा आहियो. पर ही जेको माण्हू क़िस्मत सां गाने जी फरमाइश कंदा न दिलि चवंदी आहे हुनजो हलाए छॾिया. ओके सो कॉलिंग नंबर 0333212232888 डी हीउ सॉन्ग जंहिंजी फरमाइश असांखे असांजी कशफड़ीअ कई कशफ चए पई गानो न लाईंदे त नाराज़ थी वेंदी. महसूस नाराज़ तव्हांखे न आहे कंदासीं छोकिरियुनि सां लाइ शुद लाइ न बाबा सभु हिकु जहिड़ा आहियो. पर ही जेको माण्हू क़िस्मत सां गाने जी फरमाइश कंदा न दिलि चवंदी आहे हुनजो हलाए छॾिया. ओके सो कॉलिंग नंबर 0333212232888 डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻायो था कोन मूंखे ॿुधाइजो ज़रूरु. ठीकु आहे ऐं हीअ वरी कॉल पे कयूं था ॾिसूं केरु मौजूदु आहे. हलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. केर असां सां गॾु मौजूदु
1: आहे?
0: अला लॻी त वई अथव न मुबारक अथव जी सफ़ा खे. तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो? माशाल्लाह प्रोग्राम ॿुधो पिया? खैर मुबारक खैर मुबारक. अच्छा मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो

0: ओके सो कॉलिंग नंबर 0333232288 ही वाली नेक्स्ट कॉल वठूं था डिसो केयर कॉलर एसएस अगर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: केयर एसएस अगर मौजूद है
1: राशिद लाखो
0: राशिद लाखो तमा कॉल किया भा केता कॉल किया पीर गोट खां प्रोग्राम बदो पिया अज ही स्टार्ट कयो थव प्रोग्राम जो नालो वगैरह ता खबर है केड़ो प्रोग्राम कया पई खबर पे तो बाजी प्रोडक्ट के बारे में थी अच्छा सवाल पूछा तुम कदम जिंदगी में क्रीम इस्तेमाल कई
1: इलाही
0: क्यों अव या थोड़ी क्यों अव बटरे क्यों अव पो ई आहे तमा सा कडे ते तमा सोचो ते जेका हिय क्रीम मुके असर दिनो आ त बस या हमेशा लगना वेरी ताके को बे बुधाय त हिय क्रीम डाडी भली त पता उन क्रीम जे तरफ मूव कयो आ त ना हाने हने के छडे सा ही लगाइंदा से
1: एक दे बाद समेरा जे कंपनी सिर्फ हुआ कया देर वरी का इस्तेमाल न कया
0: पो दिसो ये जिंदगी में चेंज भी डाडो जरूरी हुंदो त ता चेंज के दिस जो न क्रीम के जरूर जरूर जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह केन दोस्तन के याद कंदो जी जी ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल करी ओके जी राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और वाकई जिंदगी में चेंज होता है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अगर तुम भी हिकड़ी क्रीम ते टिकी बैठा तो ये नक्यू बाबा मता बुधा दी जिन क्रीम के बारे में जरूर ट्राई कर दिजो अगर तुम जो ना चाहो था बाबा असा ब्यूटी क्रीम हाँ गर्मी में ना हणी सू तुम्हारी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो तुम्हारा व्हाइट एस की जो लवली क्रीम अव ना सफा परफेक्ट अव तुम जरूर ट्राई कर दिजो वारी बस लास्ट कॉल वासूँ लास्ट कॉलर के गर्म मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो ओके जी ये लास्ट कॉलर थे लेकिन हम ये वाली कॉल पे करेंगे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम केरे से सकन मौजूदा
2: अलीसा गदाया
0: पे अलीसा बीर कॉल लगी हुई तमाजी शालत व खुश आयो अलीसा मानू पुछन पया अलीसा जी कॉल किए लगी वेंदी आ रोज रोज उनन के ट्रिक बुधायो
2: बस लगी वेंदी आ ट्राई कंदा आयो
0: ट्राई कंदा तो लगी वेंदी आ ब्या मतलब की ब्या ट्राई नाइन कंदा जन उनन जी पुछो हुंदी लगे
2: बिल्कुल हो बताए कंदा पर किस्मत नी ग्रान हुंदी
0: आ न काई ट्रिक त हुंदी आ मुखे लगे तो
2: हां
0: मुखे लगे तो का ट्रिक आहे चलो मुख्य बुधा तो तुम प्रोडक्ट बता कोई भी जिके बुधाया थी या सोचो पया तब मुख्य यो बुधा तो बो चवंदा अलीसा सवाल पुछा तो मुख्य यो बुधा तो तुम कदे का क्रीम लगाई हुए
2: बड़ी
0: कदे भी का क्रीम कौन लगाई अव कने भी न लगाई दई या का क्रीम डिसी करे ताजी दिल सही हो जे त ई जे करे या क्रीम आहना
2: या वाइट एच वाली डिसी या दिल
0: चवे पहना दिल चवे पहना डी स्किन के डिसी के न तो दिल चवे ई छो डी स्किन बेचारे रोई थे मुखे अलीसा इग्नोर
2: हुआ है न लवली कैन हुआ
0: डी स्किन के इग्नोर न कयो बाबा ये दाढ़ी भली तव क्रीम बिल्कुल निता के वी दिजो तुम व्हाइटिश लगाए जो वरी डी स्किन जेका है वरी निदा लगाई दी सही ओके केड़े दोस्तन की याद कंदो ओके थैंक यू सो मच अलीसा तुम कॉल कई माशा अलीसा से गाल इलाही खुशी थी अलीसा असि इलाही सुठी माशा लिसनर आई टाइम सफा तेजी से गुजरन वे पो हाँ वाकई तुम्हारे कुछ मानों की जहा किस्मत थोड़ी खराब है थोड़ी खराब अव पर खैर है रोज कुछ मानों की किस्मत खराब होंगी कुछ मानों की घनी कुछ मानों की थोड़ी पर जी थोड़ी होंगी ना उ दुख न कन छो तो बाबा दुआ कदा कि नेठ तवजो भी डी तवजो भी वारो इंदो अपना टाइम आएगा जरूर और ये कहते अदि जी हमने खुशी जी और अनुष्का रोशनी संध्या इन सबको लवली ब्यूटी क्रीम और सोप यूज करने का कहा है और ये यूज कर भी रही हैं वाइट एज के प्रोडक्ट्स क्या बात है जी जबरदस्त अच्छा किशोर भाई तवा के छा थो लगे

अच्छा बाकी जिन फरमाइश रहजन पे उन्हें गाना खेल अच्छे सुबाने हलाईंदी ठीक है हाँ ते प्रोग्राम जो वक्त थो तो इजाजत वेटो वरी इन तुम से मुलाकात मुझी थी सुबाने गानो भलो आ सो मां चाहियां पई त ही गानो तव्हां एंजॉय कयो बुधो सुकून सां मां हुंदमि त तव्हां गानो न ॿुधी सघंदा सो मोकिलाणी नाहे बाबू सेंसर

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: घणी धरना ॾींदासीं. ईरान जो रचियल यूरेनियम मलबे हेठां दफ़न आहे, जंहिं तां जल्द पहुची वेंदासीं. कॾहिं बि नाहे चयो त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़तम थी वई आहे. कुझु हदफ़ रहियल आहिनि, ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था.
4: विच ओभर में ईरान जूं कामयाबियूं ख़िते ऐं दुनिया में नए निज़ाम जो रस्तो खोले रहियूं आहिनि. नार वारनि समुंडनि ते रुगो ईरान ऐं पाड़ेसरनि जो हक़ आहे. आबिना हरमुज़ जे इस्तेमाल जे लाइ दुश्मन खे मिलियल बुनियादनि जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे. ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई विच ओभर ऐं आबिना हरमुज़ बाबति 10 स्ट्रेटेजिक तजवीज़ूं जारी करे छॾियूं. मुश्तबा खामनाई चयो आहे त ख़िते में अदम तहफ़ जो वॾो कारण अमेरिकी फ़ौजनि जी मौजूदगी आहे. अमेरिका ख़िते जे मुल्कनि खे सलामतीअ जी ज़मानत ॾियण खां बि क़ासिर आहे. नार ऐं उमानी समुंड ते असां ऐं पाड़ेसरनि जो गॾियल हक़ आहे. नार में दुश्मन परॾेहनि जी का बि ज़रूरत न आहे. आबिना हरमुज़ ते नओं निज़ाम लागू करे ख़िते जे अवाम खे सुकून ऐं तरक़ीअ जी ज़मानत ॾेई सघिजे थी. आबिना हरमुज़ ते नए निज़ाम जे नतीजे में हासिल थींदड़ मुआशी फ़ाइदनि ते ईरानी अवाम बेख़ुशीअ जो इज़हार कंदो.

0: तेहरान दुश्मन आडो करें पैरा कंध झुकाइंदो गालियों जो मकसद शिकस्त या पोते अटण ना है। ईरानी सदर मसूद पश्तियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब डी है तो गालियों जो मकसद कौम के हकन की हासिलत कौमी मफादन की दिफा है। ईरानी परडेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बकाई है तो अमरीका के मुनासिब तजवीजू डिन्हीं हुई। ईरान जायज हक घुरी रो है असाजा मुतालबा मुनासिब ए जिम्मेवाराना विहण से मजबूर किया वो तो ईरान जरूर विढ़
1: सदर ट्रंप पारा ईरान की तजवीजू रद्द करने बाद आलमी मार्केट में कच्चो तेल महंगो थी वो टे सैकड़ों भात भात ब्रेंट तेल $105 फी बैरल थी वो। अमेरिका में विक्रो थींदड़ कच्चो तेल पहले $99 का वधी वो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में वधीक वाधवारो इम्कान बरकरार।
0: अमरीकी सदर 13-15 मई तीन चीन जो दौरो कंदो बीजिंग पारा तस्दीक चीनी परडेही तर्जमान मूजिब सदर ट्रंप अरबा ते बीजिंग पहुंचो। सदर शी जिनपांग बेन से मुलाकातू कंदो अमरीकी सदर चीनी सदर की दावत से बीजिंग जो दौरो कर रो है।

पंजाब जे ज़िले टोबा टैक्सिंग में एमपीए जी उताक ते फायरिंग, चार ॼणा क़त्ल, एमपीए सरदार अयूब समेत टे ॼणा मरणी, एमपीए खे ज़ख़्मी हालत में लाहौर मुंतकिल कयो वियो। पुलिस चयो आहे त हथियारबंदनि जो टारगेट एमपीए हो, वधीक जांच करे रहिया आहियूं।

रोडी वेजो कोमी शारा ते शक्की रोड हादसो मोबाइल तौर ते औरत निंगरी के मोटरसाइकिल ते अगवा करे वेंदड़ बजड़ा बहुत मोबाइल तौर ते अगवा थियण खां बची वियल औरत ज़ख्मी निंगरी गुम भारो धुर जे माण्हुनि इल्ज़ाम मणियो आहे त नी जागराणी धुर जे माण्हुनि घर ते हमिलो करे औरत ऐं ॿारी खे अगवा कयो हादसे में जवाबदार ॾिनो जागराणी ऐं अर्ज़ मोहम्मद फोत थिया औरत नज़ीरा भारो ज़ख्मी थी पई ॿारी रुखसाना गुम आहे पुलिस चवण आहे त मामले जी जांच कई पई वञे निंगरी जी ॻोल्हा बि जारी आहे

0: Joan Mobena door de pistol af kan de vijfde van Majivel. Alna waren Walsen Bojup, Kesam Bodusmi, Nayano, Joan Garame, pistol af Kareo, de Kenspe, de Gorilagi, Policeva, de Wakiji, Jaj Kerumpia.
1: मीरपुर बोलो जो गोठा गादी खान चन्नवासिन बहुत तो मुबैना तो अगवा बारसन जो एहतजाज मुजाहिरन वजह मोहम्मद हुसैन ने मल्हार बुरो असा ये बिन औरतन के अगवा करे वया जवाबदारन के गिरफ्तार करे असा जो औरतन के बादाब कराए वने वी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधाय वी तो
0: आई नादरीन सक्कर जे न्यू पिंड वासन जो बिजली जी लोड शेडिंग है पानी जे खोट खिलाफ एहतजाज रवासन बाजो न्यू पिंड में रोजाना 20 कलाक लोड शेडिंग कई पे वने पीण जो पानी भी ना है बिजली लोड शेडिंग जो खात्मो आने पीण जो पानी फराम करे परेशानी खत्म कई वने
2: सोलर है बैटरी ते डायरेक्ट
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
7: हाणी हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम आम दिल जी तकलीफ है अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763
8: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
9: रोजिया पखी है परदेसी गाल मिड़ई सागी अवां जदे बीमार हुयूं ऐं मौत जे बिस्तरे ते सुतल हुयूं उन वेल कंहिंजी का याद कंहिंजा के सूर वरी जीअण जी का आस का तमन्ना कंहिंखां का शिकायत कंहिंखे को डोरापो
10: ॾिसो न उहे कीअं जीअंदा जिन जा दिल वारा दोस्त देस छॾे परदेस हलिया विया हुजनि
9: बिल्कुल
10: मुंहिंजे ख़्याल में उहे परदेसी पखी पिया पुछाईंदा ऐं मूं अगरि इहे ई सूर पिया रहंदा
9: कहिड़ा

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 3:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर टोपियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज सा कुदरती शिफा हासिल करियो। सेहत तंदुरुस्ती जी नई राह ते गामजन थियो तपोए देर छो अवां जे पांजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वो है। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे तई बरोज जुम्मो मोकल है। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण मशोरे रबते 0327-99-84-763।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

सुनते हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।

0: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे,
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का। सुबह

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

अगवारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थे ते शहीदन के भेटा पेश कर असेंबली में पेश में शहीद थींदड़न के शानदार भेटा पेश खरा ते गाले शहरी शहीद थिया पाकिस्तान भारत खिलाफ रुगो 54 मिनट ऑपरेशन कयो शिकस्त डिनी कौम भी दुश्मन खिलाफ मुतहद हुई भारत जंगबंदी के लिए अमेरिकी सदर के चयो हो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग के खात्मे बाबत ईरानी जवाब के नाकाबिले कबूल करार दी दे रद्द कर छो ईरान ते वधिक हमलन जो चेताव समाजी वेबसाइट ते जारी कल बयान में डोनाल्ड ट्रंप चवा तो ईरान गेम खेली रो है पर हाँ खेस घणी डर न डी वी ईरान जो रचायल यूरेनियम मलबे हेठा दफन है जै ती जल्द पहुंची वेंदी कदें भी ना तो ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई खत्म थी वही है कुछ हद पढ़ल बेहतर अंदर हमला कर सकूं था ओभर में कामयाबियों खिते दुनिया में नए निजाम जो रस्तो खोले रही है नारवार समुंडन से रुगो ईरान ए पाड़ेसरन जो हक है आबदा हरमुज के इस्तेमाल के लिए दुश्मन के मिलल बुनियादन जो खात्मो जरूरी है ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामराई विच ओभर ए आबदा हरमुज बाबत 10 स्ट्रेटेजिक तजवीजू जारी कर छो मुश्तबा खामराई है खिते में अदम तहफुज जो वो कारण अमेरिकी फौजन की मौजूदगी है अमेरिका खिते के मुल्क के सलामती की जमानत दियण का भी कासिर है नार ए उमानी समुंड से असा पाड़ेसरन जो गडियल हक है नार में दुश्मन परदेहन की का भी जरूरत ना आबदा हरमुज से नव निजाम लागू करे खिते के आवाम के सुकून ए तरक्की की जमानत दई सके थी आबदा हरमुज से नए निजाम के नतीजे में हासिल मुआशी फायदन से ईरानी आवाम भी खुशी का इजहार कद तेहरान दुश्मन आडो कदें भी कंध न झुकाइंदो पोते हटन ना है ईरानी सदर मसूद पेज़िश्कियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब दींदे चवा तो गालिन जो मकसद कौम के हकन की हासिलत ए कौमी मुफादन जो दिफा है ईरानी परदे वजारत के तर्जमान इस्माइल बकाई चवा तो अमेरिका के मुनासिब तजवीजू डी हुई ईरान जायज हक घुरी रो है असाजा मुतालबा मुनासिब ए जिम्मेवारा विढ़ने से मजबूर किया वो तो ईरान जरूर विढ़ो सदर ट्रंप पारा ईरान जो तजवीजू रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कच्चो तेल महंगो थी वो 3 सैकड़ो वाध बाद ब्रेंट तेल $105 फी बैरल थी वो अमेरिका में विक्रो थींदड़ कच्चो तेल भी महंगो फी बैरल $99 का वधी वो आलमी मार्केट में तेल की कीमत में वधिक वाध वारो इम्कान बरकरार अमेरिकी सदर 13-15 मई तीन चीन जो दौरों कंदो बीजिंग पारा तस्दीक चीनी पर ही तर्जमान मुजिब सदर ट्रंप अरबा से बीजिंग पहुंचो सदर शी जिनपिंग ए बन से मुलाकातू कंदो अमेरिकी सदर चीनी सदर की दावत से बीजिंग जो दौरों कर रो है वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ आईटी ए टेलीकॉम बाबत इजलास गिलगित आजाद कश्मीर में आसान खिदमत मरकज कायम करने के लिए कम तेज करने की हिदायत वजीर आजम शहबाज शरीफ चवाए तो आईटी शोबे के हथी वठाने बरामदात बधाने पहली तरजीह है नौजवान की आईटी के हवाले से महारत में भरपूर फायदों वठन घुर्जे आसान खिदमत मरकजन बाबत सूबन से गडजी कम कर वे आईटी के शोबे में शहरी ए बहराड़ी के इलाक में फर्क के खत्म कर वे इस्लामाबाद में दहशतगर्दी जो मनसूबो नाकाम बलोचिस्तान में औरत आबघाती बम्बार गिरफ्तार तफसीली जांच एतराफ बाद वालिद हवाले वे वजीर सरफराज मुफ्ती चवा है कानून लागू कदड़ इदार मुल्क के वही तबाही का बचाया है बलोच औरतू इन जंग जो हिस्सों ना इन केस में भी औरत जो सौत मुलविज हो दहशतगर्दन के बलोच से को भी ताल्लुक ना औरत के पीओ के मारने की धमकी दई आबघाती हमले जो वो दहशतगर्दन के बलोच से को भी ताल्लुक ना मुझे खानदान जो को भी मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास ना है थो वे वजीर बरादरी शाह की वजाहत सहाफिन के सवाल जो जवाब दींदे वे वजीर बरादरी शाह चो तो मुझे खानदान जो जो मानू पास थो है तो नालो बुधा बाकी मुझे खानदान जो मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास ना थो वफाक सिंध हुकूमत की सिफारिश से शफकत हुसैन वधो के इरसा में सिंध जो मेंबर मुकर्र कर छो एहसान लिगारे की सिफा सबब 3 महीनों का इरसा में सिंध के मेंबर की सीट खाली पल हुई आबी वसीलन वाली वफाकी वजारत शफकत हुसैन वधो की मुकर्री जो नोटिफिकेशन जारी कर छोड़

0: रोड़ी वेझो कौमीशाहरा ते शकी रोडा सो मुबैना तौर औरत ऐं निंगीअ खे मोटरसाइकिल ते अगवा करे वेंदड़ ॿ ॼणा फौत मुबैना तौर अगवा थियण खां बची वियल औरत ज़ख़्मी निंगरी गुम भारो थोरो इल्ज़ाम मड़ियो आहे त जागीराणी थोरे जे माण्हुनि घर ते हमिलो करे औरत ऐं ॿारीअ खे अगवा कयो हादसे में जवाबदार ॾिनो जागीराणी ऐं अर्ज़ मोहम्मद फौत थिया औरत नज़ीरा ज़ख़्मी थी ॿारी रुखसाना गुम आहे वारसनि जो ॿारीअ जी वाजिबी जे लाइ एहतजाज पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच कई पई वञे निंगरी जी ॻोल्हा जारी आहे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारू ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम आम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327 9984763

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: सिंध के माथे का झूमर
6: DFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: சோகம்.
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागल खाना 29।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आवां जी होस्ट सदफ भुट्टो। नाज़रीन, मैं तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां प्रोग्राम अव्हांखे कोमल एंटरप्राइज़ जी तरफ़ां पेश कयो वञे थो। नाज़रीन, असां वटि उमराणी साहब मौजूदु आहिनि हिन महफ़िल जी।

0: बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट थे हम लोग अंदर दहशत गर्द खिलाफ कार्रवाई जो महफूज रखूँ था पाकिस्तान
1: 5 PM This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News

बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट से हमलों के अंदर दहशत गर्दन खिलाफ कार्रवाई जो अक महफूज रखू था पाकिस्तान अफगानिस्तान से वाजह कर छो अफगान नाजिम अल उमूर के परदेही ऑफिस तलबी बन्नू में पुलिस पोस्ट ते दहशतगर्दन हमले लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल ते सख्त एहतजाज दहशतगर्दी लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल ते गणती भी जाहिर परदेही तर्जमान जांच शायदियन में साबित थो है बन्नू में पुलिस पोस्ट से हमले की रथाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दन कई गडल कॉमन के रिपोर्ट्स में भी अफगानिस्तान में दहशतगर्द तनजीम की मौजूदगी जो साबित हैं अफगान तालिबान खारिजियन हिंदुस्तानी फितने दाइश खिलाफ कार्रवाई करें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग के खात्मे बाबत ईरानी जवाब के नाकाबिले कबूल करार डींदे रद्द कर छो ईरान से हमलन जो चिताव समाजी वेबसाइट से जारी कल बयान में डोनाल्ड ट्रंप है ता ईरान गेम खेली रो है पर हाँ खेस घड़ी डर न डी वी ईरान जो रिचार यूरेनियम मलबे हेठा दफन है जै ती जल्द जल्द पहुंची वेंदासीं कदें भी नाहे चयो त ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई खत्म थी वई आहे कुछ हदफ रहियल आहिनि बिन हफ्तनि अंदर वधीक हमला करे सघूं था विच ओवर में ईरान जो कामयाबियों खिते दुनिया में नए निजाम जो रस्तो खोले रही हैं नारवारन समुंडन ते रुगो ईरान पाड़ेसरियन जो हक है अपना हरमुस के इस्तेमाल लाए दुश्मन के मिलियल बुनियादन जो खात्मो जरूरी है ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई विच ओवर अपना हरमुस बाबत 10 स्ट्रेटेजिक तजवीजू जारी कर छ्यूं मुश्तबा खामनाई है खिते में अदम तहफुज जो वो कारण अमरीकी फौजियों की मौजूदगी है अमरीका खिते के मुल्क के सलामती जी जमानत डेण का भी कासिर है नार ओमानी समुंड ते असा पाड़ेसरियन जो गड़ियल हक है नार में दुश्मन परदेहन की का भी जरूरत ना है अपना हरमुस ते नओ निजाम लागू करे खिते जी अवाम के सुकून तरक्की जी जमानत दई सकजे थी अपना हरमुस ते नए निजाम के नतीजे में हासिल थींदड़ मौशी फायदन ते ईरानी अवाम भी खुशी जो इजहार कंदो दुश्मन आडो कदें भी कंध न चुकाइंदो गालियन जो मकसद शिकस्त या पोते हटण ना है ईरानी सदर मसूद पिस्टकियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब डींदे चयो है त गालियन जो मकसद कौम जे हकन जी असलात ए कौमी मफादन जो दिफा है ईरानी परदेही वजारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो है त अमरीका के मुनासिब तजवीजू डिनियूं हुयूं ईरान जायज हक घुरी रहियो है असांजा मुतालबा मुनासिब ऐं ज़िम्मेवाराना आहिनि विहण ते मजबूर कयो वियो त ईरान ज़रूर विढ़ंदो

सदर ट्रंप पारां ईरान जूं तजवीज़ूं रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थी वियो। 300 वाद ब्रेंट तेल $105 ते फी बैरल थी वियो। अमरीका में विकरो थींदड़ कचो तेल भी महांगो फी बैरल $99 खां वधी वियो। अमरीकी सदर 13-15 मई ताईं चीन जो दौरो कंदो, बीजिंग पारां तस्दीक। चीनी परडेही तर्जुमान मूजिब सदर ट्रंप अरबा ते बीजिंग पहुचंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। अमरीकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे। वारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते शहीदन के भेटा पेश करण वारो ठहराव सिंध असेंबली मां यक राय मंजूर। ठहराव ते ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में पाक फ़ौज खे बहादुरी ते भेटा पेश कयां थो। पाकिस्तानी शाहीननि दुश्मन जा जंग में 8 जहाज किराया। भारत जे हरूर राफेल खे बि मिटीअ जो ढेर बणायो। भारत जा 77 खां वधीक ड्रोन्स किराया विया। भारत शहरी आबादी खे निशानो बणायो जंहिंसां आम शहरी शहीद थिया। पाकिस्तान भारत ख़िलाफ़ रुगो 54 मिंट ऑपरेशन कयो ऐं शिकस्त ॾिनी। क़ौम बि दुश्मन ख़िलाफ़ मुतहिद हुई। भारत जगबंदी लाइ अमरीकी सदर खे चयो हो। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी जो मनसूबो नाकाम। बलूचिस्तान मां औरत आपघाती बमबार गिरफ़्तार। तफ़सीली जांच ऐं एतिराफ़ बाद वालिद हवाले। वॾे वज़ीर सरफराज़ भुगती चयो आहे त कानून लागू कंदड़ इदारनि मुल्क खे वॾी तबाही खां बचायो आहे। बलोच औरतूं हिन जंग जो हिसो न आहिनि। हिन केस में बि औरत जो सोट मुलविस आहे। दहशतगर्दनि जो बलोचनि सां को बि ताल्लुक नाहे। औरत खे पीउ खे मारण जी धमकी ॾेई आपघाती हमले जो चयो वियो। दहशतगर्दनि जो बलोचनि सां को बि ताल्लुक नाहे। मुंहिंजे खानदान जो को बि माण्हू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मां पास नाहे थियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी वज़ाहत। साफ़ियुनि जे सवाल जो जवाब ॾींदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त मुंहिंजे खानदान जो जेकॾहिं को माण्हू पास थियो आहे त नालो ॿुधायो। बाक़ी मुंहिंजे खानदान जो माण्हू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मां पास नाहे थियो।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे चटाभेटी इब्तिहान में विहंदड़ वसीलन वारे वफाकी वफाकी वज़ारत शफकत हुसैन वदो जी मुकररी जो नोटिफिकेशन जारी करे छोड़ो।

सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबाद करण जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। फैज़गंज में आबादगारनि ऐं सियासी समाजी दूरीअ ॿिए ॾींहुं बि आबपाशी ऑफिस अॻियां धरणो। फैज़गंज वा में पाणी छॾे फसल बचाइण जो मुतालबो। सराड़ी भरिसां बि जमील शाख मां निकरंदड़ 1L वाटर कोर्स जे आबादगारनि जो मुज़ाहिरो। आबपाशी अमलदारनि ते पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। नवाबशाह में खियारियूं शाख जे आबादगारनि जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ प्रेस क्लब अॻियां मुज़ाहिरो। पूछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। सामारे में नबी सिर वाह जे आबादगारनि जो वाराबंदी। पाणीअ जे गैर मुनसिफ़ानी वर्च ऐं केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ एहतजाज। पाणी फराहम करे कूड़ा केस ख़तम करण जो मुतालबो। जे जनाज़े में शिरकत लाइ घोटकी विदड़ पीउ खे कराची में क़त्ल कंदड़ जवाबदार ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार। जवाबदार पुर मज़ामत ते धीउ जे जनाज़े में शिरकत लाइ वेंदड़ पीउ मंसूर शेख खे क़त्ल ऐं चाचे राशिद खे पुर ज़ख़्मी कयो हो। सचल पुलिस मुक़ाबले में जवाबदार सुहेब खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो।

0: हैदराबाद जे सदर वारे इलाइक़े में फ्लैट मां पीरसन जो गोलियूं लॻल लाश रत। पुलिस वाकियो आबगात करार ॾेई छॾियो। 80 वरियनि जे मोहन लाल जो फ्लैट मां गोलियूं लॻल लाश मिलियो। पुलिस जो चवण आहे त पीरसन आबगात कयो आहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद वधीक ख़बर पवंदी। तलहार भरिसां ट्रैक्टर ट्राली खाई में कल्टी, ॿ बोरियत दॿजी फोत, ड्राइवर ज़ख़्मी। परियार बाउंड्री वटि हैदराबाद बदीन रोड ते ट्रैक्टर ट्राली खाई में कल्टी थी। हादसे में बोरियत उर्स ऐं गुलसन मल्ला फोत थिया। ड्राइवर गुलज़ार सख़्त ज़ख़्मी थियो, इलाज लाइ अस्पताल मुंतकिल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक।

0: वानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरंड वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-9984-7063
1: It's 5:15 p.m.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia jo show. A product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
7: अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आवा जी होस्ट सदब भुट्टो।
8: हिन भेरे ब कोशिश किया ऐ नई गाल पहाके जे हिसाब सा मशहूर हुआ था हरकतन का नो पुठिया नेशी आशिक कोई मिली हो इन सा वो मानू इनके समझाए पे हो अदा तू अजा नौजवान आई उनकी जवानी जो एहसास कर कुछ क्यास कर इन इश्क में कुछ नवर दई इन इश्क अस पगू बधरायू तो तोखे पगू बधराई दो नौजवान आशिक जवाब पेड़े पर कड़े नमन सा।

0: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखिन जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: जाने जहां देखिए 22 दिसंबर से हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां ईरान जूं तजवीज़ूं रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थी वियो। 3% वाध बाद बैरेंट तेल $105 फी बैरल थी वियो। अमरीका में विकरो थींदड़ कचो तेल बि महांगो, फी बैरल $99 खां वधी वियो। आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतुनि में वधीक वाध वारो इम्कान बरक़रार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13-15 मई ताईं चीन जो दौरो कंदो, बीजिंग पारां तस्दीक। चीनी परडे॒ही तर्जुमान मूजिब सदर डोनाल्ड ट्रंप अरबा ते बीजिंग पहुचंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं रिथियल। अमरीकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे। हक वारी जंग में कामयाबीअ खे साल मुकमल थियण ते शहीदनि खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ सिंध असेंबलीअ मां यकराउ मंज़ूर। ठहराउ ते ॻाल्हाईंदे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवण हो त ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फ़ौज खे बहादुरीअ ते भेटा पेश कयां थो। पाकिस्तानी शाहीननि दुश्मन जा जंग में 8 जहाज़ किराया। भारत जे गुरूर राफेल खे बि मिटीअ जो ढेर बणायो वियो। भारत जा 77 खां वधीक ड्रोन्स किराया विया। भारत शहरी आबादीअ खे निशानो बणायो जंहिंसां आम शहरी शहीद थिया। पाकिस्तान भारत ख़िलाफ़ रुगो 54 मिंट ऑपरेशन कयो ऐं 72 शिकस्त ॾिनी। क़ौम बि दुश्मन ख़िलाफ़ मुतहद हुई। भारत जंग बंदीअ लाइ अमरीकी सदर खे चयो हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बचत मुहिम में वधीक ॿिनि हफ़्तनि जी वाधि करे छॾी। बचत मुहिम हाणे 15 जून ताईं जारी रहंदी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी जो मंसूबो नाकाम। बलोचिस्तान में औरत आपघाती बम्बार गिरफ़्तार। तफ़सीली जांच ऐं एतिराफ़ बाद वालिद हवाले। वॾे वज़ीर सरफराज़ बुख्टी चयो आहे त क़ानून लागू कंदड़ इदारनि मुल्क खे वॾी तबाहीअ खां बचायो आहे। बलोच औरतूं हिन जंग जो हिसो न आहिनि। हिन केस में बि औरत जो सौट मुलविस हो। दहशतगर्दनि जो बलोचनि सां को बि तालुक़ु न आहे। औरत खे पीउ खे मारण जी धमकी ॾेई आपघाती हमले जो चयो वियो। दहशतगर्दनि जो बलोचनि सां को बि तालुक़ु न आहे।

मुझे खानदान जो को भी मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास ना थे वे वजीर मुराद अली शाह की वजाहत सहाफिन के सवाल जो जवाब दींदे वे वजीर सैयद मुराद अली शाह चवण हो तो मुझे खानदान जो जेकरे को मानू पास थो है तो नालो बुधायो बाकी मुझे खानदान जो मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास ना थो

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चटाभेटी इम्तिहान के नतीजन खिलाफ एहतजाज कंदड़ उम्मीदवार खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे छी। उम्मीदवार के बीहर इम्तिहान दियण लाए तैयारी करने की भी सलाह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है। फेल उम्मीदवार शिकायत लाए राबो कन एहतजाज का पासो कन बी सूरत में कार्रवाई कई वी। फेल थन्दड़ उम्मीदवार बीहर इम्तिहान लाए तैयारी कन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंजी इम्तिहानी अमल में शफाफियत मेरिट ईमानदारी के यकीनी बनाने लाए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जी लताड़ खिलाफ एहतजाज कंदड़ फयाज शहर ए रफीउल्ला कुरैशी की गिरफ्तारी का अग वारी जमानत मंजूर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया मेरठ जी लताड़ खिलाफ एहतजाज कंदड़न ते दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाखिल करायो हो। अदालत फयाज शहर ए रफीउल्ला कुरैशी की 50,000 रुपये के मचलकन एवज जमानत मंजूर कर वरती।

0: बाड़ीअ खे अगवा कयो। हादसे में जवाबदार ॾिनो जागीरानी ऐं अर्ज़ु मोहम्मद फौत थिया। औरत नज़ीरा ज़ख़्मी थी पई, बाड़ी रुखसाना गुम आहे। वारसनि जो बाड़ीअ जी बाज़ियाबी लाइ एहतिजाज, पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच कई पई वञे। निंगिरीअ जी ॻोल्हा जारी आहे।
1: गरीबनि जी हालत राम फरमायो, असीं ॿाहूं था ॿधूं इंतिज़ामिया खे, छा असां जा हिन मुल्क में असांजा बचा बि महफ़ूज़ न आहिनि। असीं हाणे चऊं त चऊं कंहिंखे, असां कंहिंजे तर ते वञूं? असां चई चई इंतिज़ामिया खे बार बार असां अपीलूं करे करे तकलीफ़ पिया आहियूं त ख़ुदा राम मुंहिंजी मासूम जला जेका आहे हुनखे बाज़ियाब कराए वञे। मुंहिंजी मासूम वही त आख़िरकार वही काॾे? ज़मीन जी वही आहे, को आसमान करी वियो? ख़ुदा राम असीं बार बार अपीलूं करे करे थकिजी पिया आहियूं।
0: करमपुर भरसां बगलाणी ऐं जाफरी धुरन में मेहड़ मां अगवा थियल उजाला परवीन सोलंगी 28 ॾींहं गुज़रण बावजूद बाज़ियाब न थी सघी। पुलिस रुगो माइटनि खे आसरा ॾियण में पूरी, मासूम निंगिरी जी बाज़ियाबी, वारसन ऐं सिविल सोसाइटीअ जो एहतिजाज जारी। पुलिस जी जोड़ियल GIT बि को नतीजो न ॾिनो। मासूम उजाला परवीन जो वालिद प्राइमरी उस्ताद शमसुद्दीन सोलंगी धीअ लाइ लुड़क लाड़े वेठो। संदसि चवणु हो त 28 ॾींहं गुज़री विया आहिनि पर पुलिस रुगो ख़ातिरियूं कराइण में पूरी आहे, नियाणी अञा ताईं बाज़ियाब नाहे कराई वई।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: किरु शौक हो न तोखे मुझे रो पाए तैयार थियण जो?
4: तू आज भी हसी,
3: थोरो पाए तो ॾेखार।
5: न मां थकी पई आहियां।
3: न पुट, ही थक न आहे, रत जी कमी आहे। ॾिस त केॾो न फिको थी वियो आहे तुंहिंजो चहिरो।
5: छा कयां मां?
3: 6 महीना थी विया आहिनि पुट, तूं उमीद सां आहीं। ऐं हाणे वञी तो शुरू कई आहे फौलाद जी गोरी। कचूं भाॼियूं खाईंदी कर पुट, तोखे ख़बर आहे असां त मेवनि जूं खलूं बि खाई वेंदा हुआसीं। उन्हनि सां ई त खून ठहंदो आहे। इन सां न तोखे कुझु थींदो ऐं न ई ॿार खे। पुट, हाणे तूं माउ थियण वारी आहीं। पंहिंजो ख़्यालु रखणु ॿियनि खां बि वधीक ज़रूरी आहे।
6: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
7: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयारु कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चहिरो। पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चहिरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज़।
8: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
9: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
10: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
9: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Hello, Varna. खबर ना मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला सुन दिया है
3: तू खाइंदी चाहे स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है
4: सो

0: वचन है तथा उन्हें के रोज अंडा खराय जो मंझन जी मानी में सूफ दीजो
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उनन जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घूमती रही पहरो भेरो मां थी रही आही ना मुझो भी यो ही हाल हो
4: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कियो नानी मां ता एतरो थकी थी पवा छा कयो हो तवा
5: होप

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ॾाढो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: शेरीज स्टूडियो प्रेजेंट्स।

0: छा अवां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें ई इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
1: सुनते रहो GFM 90.8।

0: शामिल आहे SPF 30 सिजे नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात खत्म करण लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आरबुटिन जेके डियन तव्हां जे चेहरे के कुदरती साफ ऐं चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर डी हुजे हिक नओ ग्लो हिक नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चटाभेटी इम्तिहान के नतीजन खिलाफ एहतजाज कंदड़ उम्मीदवार खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे छी फैल उम्मीदवार के बीहर इम्तिहान लाए तैयारी करने की भी सलाह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चया है तो फैल उम्मीदवार शिकायत लाए राबतो कन एहतजाज का पासो कन भी सूरत में कार्रवाई थी फैल थन्दड़ उम्मीदवार बीहर इम्तिहान लाए तैयारी कन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पैंजे इम्तिहानी अमल में शफाफियत मेरिट और ईमानदारी के यकीनी बनाने लाए हर मुमकिन कोशिश कर रही है
3: मुझे खानदान जो को भी मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास ना है वडे वजीर मुराद अली शाह की वजारत साफियन के सवाल जो जवाब दींदे वडे वजीर मुराद अली शाह चयो त मुझे खानदान जो जेकरे को मानू पास थियो है त नालो बुधायो बाकी मुझे खानदान जो मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास

0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ की लताड़ खिलाफ एहतजाज कदड़ फयाज शहर ए रफीउल्ला कुरैशी की गिरफ्तारी का अगवारी जमानत मंजूर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया मेरठ की लताड़ खिलाफ एहतजाज कदड़न दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाखिल कराया हो। अदालत फयाज शहर ए रफीउल्ला कुरैशी की 50,000 रुपये की मचलकन एवज जमानत मंजूर कई।
1: बनू में पुलिस चेक पोस्ट से हमलों कर दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जो हक में पूछ सकूं था। पाकिस्तान अफगानिस्तान से वाजे कर छो अफगान नाजिमुल उमूर के परडे ऑफिस तलबी बनू में पुलिस पोस्ट से दहशतगर्द हमले लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से सख्त एहतजाज। दहशतगर्दी लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से घंटी भी जाहिर परडे तर्जमान है जांच ए शाहिदन में साबित है बनू में पुलिस पोस्ट से हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दन कई। गडियल कौमन की रिपोर्ट्स में भी अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमन की मौजूदगी जो साबित हैं अफगान तालिबान खारिजियन हिंदुस्तानी फितने ए दाइश खिलाफ कार्रवाई करें।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। सचल की सरमस्त धरती
3: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोजिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे और विटामिन सी ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम हर दिन हो एक नया ग्लो एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।
5: हाँ नरम चमक आई साफ जिल्द रुगो एक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिमे शामिल आहे SPF 30 सिज जी नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड आई जिल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आर्बोटिन जेके डियन तवा जे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो। रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।

चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसान दे श्वाओं से तहफ़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसान दे श्वाओं से तहफ़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।

बि हूंदी आहे ऐं अव्हांजी फरमाइश सां गॾो गॾु प्रोग्राम में कुझु पैगाम बि हूंदो आहे जेको मुंहिंजे ज़िमे हूंदो आहे अव्हां ताईं पहुचाइण, बिल्कुलु हैमे वारनि जो, छाकाणि त हुननि स्पॉन्सर कयो आहे हीउ शो। त दोस्तो बिल्कुलु अव्हांखे ॿुधायां त अॼु जे प्रोग्राम में जेको सेगमेंट आहे उहो आहे अव्हांजे लाइ ॼाण जी खाण, ऐं ॼाण जी खाण सेगमेंट में अॼु सवाल कहिड़ो आहे इहो ॿुधाइण खां पहिरियां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त तव्हां पंहिंजी फरमाइश बि ॿुधी सघो था अॼु के प्रोग्राम में, पंहिंजा फेवरेट सिंगर्स ॿुधी सघो था एज़ वेल। करिणो छा आहे, तव्हांखे सिंपली पंहिंजे फेवरेट सिंगर जी फरमाइश कंदो, जंहिं सिंगर जा वधीक वोट हुया उहो सिंगर प्रोग्राम में मां शामिल कंदुसि, ठीकु आहे। सो प्रोग्राम में शामिल कीअं थो थी सघिजे, अवां लाइव कॉल या व्हाट्सएप जे ज़रिए मूंखे जॉइन करे सघो था। नंबर आहे 03-000-11-34-88 ऐं मैसेज जे ज़रिए बि जॉइन करे सघो था। मैसेज जे लाइ पंहिंजे मोबाइल जे राइट मैसेज ऑप्शन में वञो, SKR लिखो, स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज, 888 यानी 8881 ते सेंड करे छॾियो, ऐं फेसबुक ते ॿुधण जे लाइ बल्कि फेसबुक खे छॾियोसि तव्हां, ठीकु आहे, GAFM.net ते अची करे तव्हां असांजी वेबसाइट जे ज़रिए प्रोग्राम ॿुधी सघो था। सो जीअं मूं ॻाल्हि कई त हीउ प्रोग्राम स्पॉन्सर आहे अव्हां ताईं पहुचाइण लाइ तावन कयो आहे हैमे नेचुरल्स वारनि, त हैमे नेचुरल्स वारनि दावा कई आहे त हिननि जी प्रोडक्ट आहे जंहिंमें SPF 30 शामिल आहे, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी, आरबुटीन ऐं ॿिया केतिरा ई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जेके अव्हांजे चेहरे जी स्किन जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि। SPF 30 तव्हांखे सन प्रोटेक्शन ॾिए पियो, कॉजिक एसिड्स हिन में जेको शामिल आहे चेहरे तां दाग धबा निशाना जो ख़ात्मो करे पियो, ऐं ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी ऐं आरबुटीन इहो वरी अव्हांजे चेहरे जी स्किन खे बिल्कुलु नेचुरल ग्लो ॾिए पियो, यानी तव्हांजो चेहरे जी स्किन जेका आहिनि उहा नेचुरल ग्लो करे पई। कुदरती निखार जॾहिं अचे पियो त हर कोई अव्हां खां इहो ई पियो पुछे त बाबा अव्हांजे चेहरे ते जेको इहो निखार आहे इन जो रास छा आहे, ऐं तव्हां चओ पिया बाबा इहो सॼो कमाल आहे हैमे ब्यूटी जो, बिल्कुलु। त हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम इन जी प्राइस जी मां ॻाल्हि कयां त हिननि ॿुधायो आहे 332-360 रुपीज़ वेरीज करे पई, पर कुझु दुकानदार तव्हांखे 330 में ॾियनि पिया, वरी 340 या 350 या 360 ताईं तव्हांखे इहा हैमे ब्यूटी क्रीम ईज़ीली मिली सघे थी। गॾो गॾु अव्हांजे शहर जे वेझे स्टोर ते स्पेशली शाही बाज़ार जॾहिं अव्हां वञो पिया त उते तव्हांखे आसानी सां हैमे ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी। ऐं सेकेंडली इन जो हेल्पलाइन नंबर बि आहे, जेकॾहिं अव्हांजे शहर में अवेलेबल न हुजे त तव्हां सिंपली इन्हनि जे हेल्पलाइन नंबर ते बि कॉल करे सघो था, ऐं जीअं इन्हनि खां पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हैमे ब्यूटी क्रीम मौजूदु आहे। त इन जो हेल्पलाइन नंबर आहे 03-6-71-35-407। नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, 03-36-71-35-407। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हैमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में इन्हनि खां मालूमात वठी सघो था, ऐं जी पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे, ठीकु आहे, डन थी वियो। सो दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त प्रोग्राम में अच्छा सेल्फीज़ जे लाइ बि इन्हनि ॿुधायो आहे हैमे ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदड़ आहियो त इन सां गॾु पंहिंजी प्यारी प्यारी सेल्फी जेके आहिनि असांखे व्हाट्सएप ते तव्हां सेंड कंदो त तव्हां क़ुरानंदाज़ी में शामिल थी सघो था, ऐं एवरी वीक जेको आहे क़ुरानंदाज़ी कंदी आहे सेल्फी विनर ऑफ द वीक खे 500 रुपियनि जो कैश इनाम मिलंदो आहे। त 500 रुपए जो कैश इनाम अव्हांखे बि मिली सघे थो, पर हाणे करिणो छा आहे, तव्हांखे सेल्फियूं तव्हांखे इन वीक मोकिलणियूं आहिनि, ऐं इन वीक जॾहिं अव्हां सेल्फीज़ मोकिलींदो न त हुनजी क़ुरानंदाज़ी मां कंदुसि सुभाणे 12 तारीख़ आहे, ऐं ख़ैर सां 14 तारीख़ ते मां हिन जी क़ुरानंदाज़ी कंदुसि, ठीकु आहे, यानी थर्सडे ते क़ुरानंदाज़ी करे वरी पोइ मां खां हथ ॿधी मोकिलाईंदुसि हिन प्रोग्राम में कुझु ॾींहनि जे लाइ, ठीकु आहे, वरी कुझु ॾींहनि खां बाद में वरी हिन प्रोग्राम में अॻियां अव्हां सां मुलाक़ात कंदुसि, ठीकु आहे। त थर्सडे ताईं तव्हां धड़ाधड़ पंहिंजूं सेल्फीज़ मोकिलियो त जीअं तव्हांजी उहे सेल्फीज़ मां क़ुरानंदाज़ी में शामिल करे सघां, ऐं पोइ थर्सडे ते क़ुरानंदाज़ी करे अव्हां खां पोइ टाटा बाय बाय कयां हिन रौनक महफ़िल में, ठीकु आहे। सो सेल्फी मोकिलण लाइ असांजो व्हाट्सएप नंबर अथव 03-000-11-34-88 ऐं मैसेज बि तव्हां करे सघो था। मैसेज जे लाइ तव्हां SKR लिखो, स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज, 888 यानी 8881 ते सेंड करे छॾियो, ऐं फेसबुक ते ॿुधण जे लाइ असांजो फेसबुक पेज आहे GAFM, उते अची करे तव्हां असांखे ज्वाइन करे सघो था। सो प्रोग्राम में हींअर तमामु प्यारो प्यारो कलाम अव्हांजे लाइ प्ले कयो आहे, तव्हां कलाम ॿुधो, पर कलाम प्ले करण खां पहिरियां अव्हांजे लाइ जेका अॼु ॼाण जी खाण सेगमेंट में अव्हांजे लाइ सवाल आंदो आहे, तमामु सवलो ऐं दिलचस्प सवाल आहे, दिलचस्प आहे, ठीकु आहे। 500 रुपियनि जो तव्हांखे कैश इनाम ॾियणो आहे, तव्हां इहो ॿुधाईंदा त जेको 500 रुपियनि जो आहे नोट, पाकिस्तानी नोट, उनजी पुठियां छा जी तस्वीर छपियल आहे, ठीकु आहे। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, द पिक्चर ऑन द बैक साइड ऑफ 500 रुपीज़ पाकिस्तानी नोट इज, ठीकु आहे, उहा तव्हांखे पिक्चर ॿुधाइणी आहे, कहिड़ी पिक्चर छपियल आहे पाकिस्तानी नोट 500 रुपियनि जे पुठियां, तव्हां हिन जो जवाबु ॾींदव ऐं प्रोग्राम में शामिल ॾियां। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मां अव्हां सां इन सां रेलिवेंट थोरी एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर कंदुसि त जीअं अव्हांजी नॉलेज में इज़ाफ़ो थिए, त मूंसां गॾु कनेक्ट रहिजो इन रौनक महफ़िल में।

अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आपको दे एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.

0: सो दोस्तों बिल्कुल हैमे नेचुरल डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जी तव्हां गानो ॿुधियो तमामु प्यारो प्यारो. अचो त कुझु वॉइस नोट्स हाणे प्रोग्राम में शामिल कयूं पिया जेका हिन प्रोग्राम रौनक महफ़िल जी हक़ीक़ी रौनक आहिनि. अचो त ॿुधूं.
1: तस्वीर मोकिलियोसीं मूंखे टुवाल सां आहे यानी कारे रंग ते कपिड़ा पातल आहिनि ऐं मूंखे उमेद आहे त तस्वीर अवां ताईं पुॻो हूंदो ऐं हेमे बीटी क्रीम ज़बरदस्त क्रीम अचे सुठो प्यारो ख़ूबसूरत बनाए थो. दोस्त आहिनि इम्तियाज़ अली बंगलाणी राणो ब्रोई निंडड़ो आसिफ अली तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो चाचड़ उनखां पोइ बिलावल निंडड़ो प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं सुभाणे जेको आहे सो तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो. के अलाह हाफ़िज़.
0: अला हाफ़िज़ अदा तव्हांजी महिरबानी भाउ. तव्हांजी सेल्फी बिल्कुलु मूं ताईं पहुती. इमाम निनो भमरो साहब जे बि सवाल जो जवाबु आहे. ओके भाउ तव्हांजो जवाबु नोट कयो आहे हिकिड़ो ही वॉइस नोट.
2: वालेकुम बाबर बादशाह ख़ुशि आहियो ख़ैरात वैसे सही आहे तव्हांजो पराम दिलि ॻाल्हायां बार बार हिन बिटी क्रीम ते कलाम ठाहियो आहे.

0: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आरबोटीन जेके ॾियन तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: All dear listeners, बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम में बाबर शेख आया हुआ असां गॾु ऐं रौनक महफिल प्रोग्राम में हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में अव्हां खे ॿुधायो वञे पियो अबाउट द प्रोडक्ट छाकाणि त स्पॉन्सर शो आहे त हिन जी स्पॉन्सरशिप बि जेका आहिनि मां अव्हां ताईं पहुचायां पियो ऐं हिन जो पैगाम अव्हां ताईं कन्वे कयां पियो ऐं इहो पैगाम जेको हिन जो आहे न तमामु घणो फ़ाइदे वारो अव्हां जे लाइ साबित थी सघे पियो जेकॾहिं अव्हां इन्हनि जी प्रोडक्ट ते थोरो ग़ौर वीचार करे इस्तेमालु करे सघो छाकाणि त जिन जिन इस्तेमालु कई आहे उन्हनि इहो ई फीडबैक ॾिनो आहे त बाबर भाउ वाह वाह वाह वाह ऐं वाह वाह हेमे ब्यूटी त वाह वाह आहे त बिल्कुलु दोस्तो तव्हां बि हेमे ब्यूटी जो फ़ाइदो हासिलु करे सघो था ऐं विद इन 7 डेज़ तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे पियो तव्हांजे चहिरे ते दाग धब्बा मोहिड़ा छावां झुरियूं छुरियूं न बल्कि झुरियूं जी हा ऐं डार्क सर्कल्स अगरि आहिनि उहे तव्हांजा दूरि थी सघनि था विद इन 7 डेज़ तव्हांखे जेको हिन जो रिज़ल्ट मिलंदो न तव्हां थींदा बाबर भाउ या हेमे आहे या कुझु जादू आहे मां चवंदो आहियां पाण ॼाणो हेमे अथव इस्तेमालु करे ॾिसो रिज़ल्ट कीअं थो मिलेव सो वधीक तव्हांजे मुतालिक़ का बि मालूमात तव्हांखे घुरिजे त तव्हां हिन जे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे सघो था नंबर आहे 0336-7135-407 जी हा 0336-7135-407 कुझु मैसेज आहिनि बाबर ब्रो हाउ आर यू आई एम फरज़ाना बलोच एंड आई एम एंजॉइंग योर प्रोग्राम बाबर ब्रो थैंक यू फरज़ाना सिस एंड यू आर एंजॉइंग द शो एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट हेमे ब्यूटी प्लीज टेल मी अबाउट द प्रोडक्ट एज वेल सो कुझु वॉइस नोट्स बि आहिनि ऐं कुझु मैसेजेस बि आहिनि हीअ मैसेज छा पिया चवनि त ओके मैं नूर अली खास के लिए विलेज डॉक्टर यार मोहम्मद झांझी से एंड आपके क्वेश्चन का आंसर है 500 रुपए के नोट के पीछे 500 रुपए के अल्फाज साथ भावल दीन जकरिया का चलें जी देखते हैं आपने जवाब सही दिया है या नहीं सो भला कड़ो 500 जो नोट डिठो आया दे मेरा लिखो ही वॉइस नोट आए बुधो
2: अल्लाह पाक तवांखे बाबर साईं ऐं तव्हांजी पूरी टीम खे 5-12 जे सदिके आबाद रखे ज़वार मोहम्मद बचल शंबाणी अली हसन बाबो सोनड़ो भाउ सोना खान मस्तोई वफ़ा वईद जतोई ऐं जेकी बि नज़ीर अहमद मंगरियो साहिबु जेकी संगत ॿुधे थी पारां सैद गुलाब अली शाह बुखारीअ तरफ़ां अस्सलाम अलैकुम या अली मदद ऐं शमन जो प्रोग्राम गानड़ो जो पासो उहो हली रहियो आहे मुंहिंजो सॼण साईं ज़ोर आहे इहो ॿुधी रहियो आहियां तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी अली अली
1: अली अली अदा तव्हांजी महिरबानी बाक़ी यार इहो शम जो प्ले त न कयो मां अलाए कहिड़ो थो भाउ असांजो प्रोग्राम ॿुधे असांजो गुलाबड़ो अलाए कहिड़ो थो ॿुधे शाह साहिबु तव्हांजी महिरबानी थैंक यू अदा हिकिड़ो ही वॉइस नोट अछो त ॿुधूं छा पिया चवनि
3: अस्सलाम वालेकुम यार मदद बाबर भाउ मां अब्दुल शर पियो ॻाल्हायां अकरी चए ऐं मुंहिंजो बाबा बि ॿुधे पियो अली कलाब सर त बाबर भाउ तव्हां जेको हीउ सवाल कयो आहे त 500 नोट जे पोयां कहिड़ी शइ छपियल आहे त उन जे पोयां जेका छपियल आहे तस्वीर उहा आहे बादशाही मस्जिद सो असांखे हिन प्रोग्राम में लाज़मी एड कयो त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी
1: ठीकु आहे दादा तव्हांजी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थिया तव्हां ऐं बिल्कुलु तव्हांखे एड करे छॾियो आहे ॿियो हुकुम कयो भाउ बाक़ी हेमे जे बारे में तव्हां कुझु ॿुधायो कोन वेल इट्स ओके हिकिड़ो ही वॉइस नोट ऐं ही छा पिया चवनि अचो त ॿुधूं
4: السلام علیکم میرپور خاص گوٹھ ولی محمد رند خان امتیاز علی بنگلانی باور با ہمی بیوٹی کریم بہترین چہرے جی رونق ائی گائن وجائن جو سنگمنٹ نہ ہے تاں کے با ہمی بیوٹی کریم جو بارے میں مارواڑی میں لفظ بدایا تو

0: काबिल एतराम मोहतरमा अशरफ अली मिराली सज्जन अली मिराली तनवीर अली मिराली मुमताज अली मिराली लाड़काने का आसिफ अली चाचर प्रोग्राम बदी रो शराज अली बंगलानी बिलावल बंगलानी जलावर अली बंगलानी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम माला अली मदद भा बंगलानी साहब तांजी मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल थिया थैंक यू अदा आई लिसंस बिल्कुल तवांगे बदाई तो हला त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जका है न इन में जको कॉजिक एसिड शामिल आई हो तुम्हारे चेहरे ता दाग धब्बा निशाना जो खात्मो करे सके तो आई विद इन 7 डेज तवांगे न जो रिजल्ट जको मिलंदो न तवा पाण चिंदा बाबर भा हेमे आयो तमा भी यही पे चवा बाबा हेमे तो अच्छा वर्षण वक्त तवा शाही बाजार तवा जदी मने पिया त तवांगे ओदे सुठे कॉस्मेटिक्स आसानी से मिली सके पई वधी के मालूमात लाए तवा इन जे नंबर ते कॉल कंदो नंबर आ ही 0336713547 जी आ 0336713470 इन नंबर ते तवा कॉल करे हैमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में इनका मालूमात वठी सको था आई जी पुछी सको था तो तवा रे शहर जे वेजे केड़े स्टोर थे हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है ठीक है सो ही प्रोग्राम में आवाज शामिल कयो है ममताज लाशारी जी आवाज में प्यारे प्यारे गानो अच्छा तो बुधू पिया इन रौनक महफिल में

0: हाण नरम चमक ऐं साफ़ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिंमें शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हांजे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमालु करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: So listeners, बिल्कुल ममताज लाशारी जी आवाज में यार जबरदस्त कलाम अवां बुधियो मैडम ही मखण दा चाणा उम्मीद आया आगे पसंद आयो हूंदो सो अवां जा कुछ मैसेजेस रहल आहिनि जेके शामिल करे प्रोग्राम में बाक़ी 12 मिंट बचा आहिनि ऐं पोइ अवां खां मोकिलियां पियो चनेसर सोलंगी गोठ वासन दलग मीरपुर ख़ासि खां जवाबु आहे ओके अदा गुलाब लगारी गोठ बशाम खान रिंद से गाज़ी खान रिंद चाचा मंठा रिंद रिज़वान अली रिंद फैज़ान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कोनैन जहरा आपका शो अच्छा चल रहा है आपकी कंपेयरिंग अच्छी है आपका आवाज अच्छा है पहली मर्तबा शामिल हो रहा हूँ यू आर वेलकम भाई आपको और आपकी पूरी जो है रिंद ब्रादरी को वेलकम कहते हैं पूरी फैमिली को हम वेलकम कहते हैं ठीक है आपका बहुत शुक्रिया सो झुली का खालिक लाशारी जवाब आए बादशाह मस्जिद ओके भा ॾिसूं पिया ऐं तनेसर सोलंगी साहब अदा तव्हांजो जवाब मूं ताईं पहुतो आहे अज़ादार अहमद फ्रॉम लाड़काणे खां बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम या अली मदद वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक बाबर भाई आपने FM कैसे ज्वाइन किया आपका इंटरेस्ट कैसा है FM में ये बताएं हमें टॉपिक का जवाब है ओके एंड कोई सॉन्ग तो सुनाएं सूफान अबड़ो का आज आपको मेरी फरमाइश चलानी पड़ेगी आई विल ट्राई अदा

0: सो दोस्तों अजादर भाई अजादर भाई ये जो है बातें फिर कभी, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया. सो आइए कुछ वॉइस नोट्स इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में. और ये हमारे साथ कौन है, ये इन्होंने बिल्ली भेजी है, फिर इन्होंने जो है हंसता हुआ स्मिली भेजा है. इट्स ओके भाई, आप हैं कौन, अपना नाम जरूर लिखा करें. एक ये वॉइस नोट शामिल करते हैं प्रोग्राम में, आइए सुनते हैं.
1: बाबर भा अस्सलाम वालेकुम. बाबर भा माशूक मौलाई पियो ॻाल्हायां शहर बाल्दी खां. तव्हांजो शो ॿुधी रहियो आहियां, तमामु सुठो हली रहियो आहे. ऐं तव्हांजो सुवाल ॿुधो आहे, सो सुवाल जो जवाबु इहो आहे त 500 जे नोट जे पोयां बादशाही मस्जिद जो ई तस्वीर छापियल आहे. सुवाल जो जवाबु इहो आहे साईं.
0: चलो साईं ठीकु आहे, हिकिड़ो ई वॉइस नोट.
2: अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो. कामरान अली मैसर रफ़ी मैदर खां तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधां पियो वेठो, ऐं असां सॼी फैमिली तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधे पई आहे. स्पेशली सलाम आहिनि साईं इमदाद अली शाह बुखारी खे, जेको तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, ऐं ॿी सॼी जेके संगत ॿुधे पई, सॼो जेको ॿुधंदड़ सभिनी खे मां सलाम ॾींदो अथनि. वॾी महिरबानी साईं.
0: वालेकुम अस्सलाम. हिकिड़ो मैसेज हिकिड़े ॾियण जो, ठीकु आहे. सो ही छा पिया चवनि, चवनि पिया नज़ीर अहमद मंगरियो, मोहम्मद सुलेमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल हमीद, फ़क़ीर नूर मोहम्मद भारो, फ़क़ीर शेर मोहम्मद कांधड़ो, नसरुल्ला मंगरियो, मोहम्मद गुलजोणी जो, नबन उर्फ नबी बख्श, हाजी गुलज़ार. अदा ख़बर आहे तव्हांखे व्हाट्सएप जो सिलसिलो मां शुरू ई न लाइ कयो त जीअं तव्हांजा हेॾा नाला जेके आहिनि इहे मां तव्हां पंहिंजे आवाज़ में चओ. हाणे अवां व्हाट्सएप यूज़ कयो पिया ऐं व्हाट्सएप ते बि वरी जेको आहे तहरीरी सूरत में मैसेज मोकिलियो पिया, जेको आहे न ईअं न करणु घुरिजे. बहरहाल वॉइस नोट सेंड कयो छाकाणि त व्हाट्सएप यूज़र आहियो तव्हां. ऐं हीउ कहिड़ा आहे सज्जन अली मीराली साहब, बाबा प्यारी प्यारी सेल्फी मोकिली आहे. बाबा ताड़ियूं थी वञनि सज्जन अली मीराली साहब. मीराली साहब बाबा चश्मो पातल आहे, तमामु प्यारो छोकिरो आहे, ऐं हैमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदड़ आहे. वाह साईं वाह, वाह सॼण वाह, वाह सॼण वाह. तव्हांजे लाइ गानो मां वेंदे वेंदे प्ले कयां पियो. स्पेशली तव्हां मीराली बिरादरी जे लाइ मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे. ऐं हीउ कहिड़ा आहे असां सां गॾु, हीउ चवनि पिया त तेरी ख़ैरियत का ही ज़िक्र रहता है दुआउं में, मसला सिर्फ़ मोहबत का ही नहीं फिकर का भी है. बिल्कुल आपसे यही इल्तिजा है कि आप मुझे दुआओं में जरूर याद रखें और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगा. जा तुझे माफ किया, आगे क्या होता है वो लाइन आपके लिए स्पेशली, ठीक है. सो एक ही वॉइस नोट, आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है इस रौनक महफिल में.
3: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद गोट शेर मुंड मायरन का सैयद गुलाब.
0: अच्छा ही भी गुलाबड़ो असा जो भा डबल थी है. अदरवाइज एकड़े जो एकड़ो शामिल थिंदो, ठीक है. एकड़ो ही वॉइस नोट.
4: अस्सलाम वालेकुम बाबर भाउ जा, कहिड़ा हाल ॾींहुं, खुश आहियो, तबियत तव्हांजी ठीकु आहे. शामीर अली चाचड़पन वाकिल खां ॻाल्हायां पियो. प्रोग्राम अवांजो तमामु बहितरीन सुठो लाजवाबु हले पियो ऐं हेमी बीटी क्रीम सो इस्तेमालु कयां पिया ऐं तमामु बहितर सुठो रिज़ल्ट आहे. ऐं असां दोस्तनि खे चवंदासीं हेमी बीटी क्रीम इस्तेमालु कयां, तमामु बहितर सुठो आहे ऐं प्रोग्राम अवांजो तमामु बहितरीन. ऐं जेके पिणी प्यारा दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि खोड़सर सलाम.
0: चलो वालेकुम अस्सलाम यार. हाणे ॿ टे कॉलर्स खे शामिल कयां त कॉलर जेके मूं ते कावड़ माना उन्हनि खे तव्हां पहुचाईंदो. बल्कि कॉलर जो जॾहिं मां नालो खणंदो आहे न त असांजो सेट जेको आहे न मोबाइल उहो थींदो आहे न ईअं कीअं ईअं कीअं. सो इट्स ओके दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त प्रोग्राम में तकरीबन 7 महीनो आहे यार. ख़ैर सां ऐं तव्हां जेके प्यारा लिसनर आहियो मुंहिंजा, अलहमदिल्ला तमामु प्यारा आहियो. ऐं ॿां ॿेली बि आहियो मुंहिंजा हिकिड़े क़िस्म जा, जेके हैमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदड़ आहिनि. जॾहिं हैमे जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि न त बिल्कुलु ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, छाकाणि त स्पॉन्सर शो आहे. ॾिसो स्पॉन्सर शो में असांखे हुननि जो पैगाम कन्वे करणो पवंदो आहे. हिन जो मकसदु इहो कतन कोन्हे त मां तव्हांखे इंसिट्स कयां ऐं तव्हांखे ज़ोर भरियां त यार इहा इस्तेमालु करणी अथव, न. मां जस्ट हुननि जो पैगाम अवां ताईं कन्वे कयां पियो. हाणे अवांजे मथां आहे तव्हां हिन जी प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया, अगरि सुठो रिज़ल्ट मिले पियो त तव्हां रुटीन लाइफ में शामिलु कयो पिया, नथो मिले त का ज़ोर ज़बरदस्ती कोन्हे. पर 7 महीनो आहे ख़ैर सां ऐं हर को इहो ई ॻाल्हि करे पियो त हैमे जो रिज़ल्ट सुठो मिलियो आहे, त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे. तव्हां जहिड़ा प्यारा लिसनर्स आहिनि ऐं जॾहिं ही कहिड़ा ही छा पियो चए हथ ॿधिया अथई हैमे खे, ठीकु आहे. आपको जो है हैमे के हथ अलाए छो बधिया थी, आई डोंट नो. अच्छा हैमे वारनि खे जेको आहे न तव्हां इहो फीडबैक ॾेई सघो था त तव्हांखे प्रोग्राम कीअं लॻियो, 7 महीना जेका हुन स्पॉन्सरशिप कई, हुनजी प्रोडक्ट कीअं लॻी, हुनजो हेल्पलाइन नंबर तव्हां नोट करे वठो ऐं कॉल कयो धड़ाधड़. इहो बि चई सघो था बाबा छा आहे छा आहे छा आहे छो स्पॉन्सरशिप जेका आहे ख़तमु पई कई वञे. बहरहाल नंबर आहे 0336713507. नंबर वन सेकेंड रिपीट कयां पियो, 0336713507. 407 तव्हां हिन नंबर ते कॉल करे हैमे जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था। ऐं दोस्तो बिल्कुलु जेको आहे त जुमेरात ते यानी ख़मीस ते पाण प्रोग्राम में कुरानदाज़ी कंदासीं ऐं ख़मीस ते असांजो आख़िरी प्रोग्राम हूंदो, पोइ कुझु ॾींहंनि लाइ माज़रत ख़्वाह हूंदो तव्हां खां। इन जे लाइ ख़मीस ताईं तव्हांजी वधि खां वधि सेल्फीज़ ईंदियूं त पोइ वाह वाह थी वेंदी। हिकिड़ो ही वॉइस नोट ॿुधो।
5: विसरे सारो लोक, विसरे सारो लोक, शाल न विसरे तू, तोखे केॾो मूं सांडियो आहे साम। अस्सलाम वालेकुम बाबर जानी, गोट जुड़बी थरपारकर खां वफ़ा ग़ुलाम रहीम बलोच। अव्हां जो पुरवा ॿुधूं पिया हमेशह जीअं अॼु बि लाजवाब पियो हले, तमामु ज़बरदस्त शामिल कयो मोहबतनि जे सफ़र में।
0: चलो अदा तव्हांजी महिरबानी, तव्हांजो मैसेज मूं शामिल करे छॾियो। त दोस्तो अचूं था अॼु जी जेका आहे त ॼाण जी खां सेगमेंट जी तरफ़। त अॼु जे प्रोग्राम में सवाल मूं रखियो त जेको पाकिस्तानी 500 रुपए जो नोट है उनकी पुठियां छाजी तस्वीर छपल है, तो सही जवाब है बादशाही महल। फर्स्ट बैंक नोट जो है इशू किया वो पाकिस्तान में, यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर क्या स्टेट बैंक की तरफा, वह तारीख है 1 अक्टूबर 1948। जी हाँ, जेका स्टेट बैंक की तरफा पे नोट इशू किया वो हो उनकी तारीख है 1 अक्टूबर 1948। 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपये जो जो है प्रिंटेड किया वो थॉमस डी ला रू एंड कंपनी की तरफा, ठीक है। पे मतलब नोट फर्स्ट

0: पार्टी चल रहा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है।
1: एआई वाला स्पार्टी सी लो बिल
2: हाण नरम चमक आई साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेमे शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जी नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड आई जिल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आर्बुटिन जेके दिन तवा जे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।
3: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ जी वाले सदर में मुलाकात नायब वजीर आजम इसहाक डार स्पीकर रियाज सादिक घरू वजीर मोहसिन नकवी बिया भी मुलाकात में शरीक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल अफगानिस्तान बाबत मामलन खिते की तब्दील थे सूरत हाल से गाल मारकहक के शहीदन पाक फौज के भेटा पेश कई वही सदर आसिफ अली जरदारी विचो भर की चिताण सप्लाई चेन मुतासिर थे बावजूद अवाम के रिलीफ फराहम किया वे

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 8:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: अब आपकी खूबसूरती का fan, White Age Beauty Cream.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: GFM 88
4: नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मुझे टेस्ट

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
3: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
4: GFM 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: असांजे समूरनि ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ करे पोइ फिरी वञे थो। तहरान सां अञा बि माहिदो मुमकिन आहे। उमेद कयां थो त ईरान जी सुठी क़यादत साम्हूं ईंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जी हाणे वारी तजवीज़ चिराइप आहे। ओबामा या बाइडन हुजनि हा त शायदि इहा तजवीज़ क़बूल करे वठनि हा। ईरान ते मुकमल फतह ज़रूरु हासिलु कंदासीं।
1: विच ओवर में ईरान जूं कामयाबियूं खिते ऐं दुनिया में नए निज़ाम जो रस्तो खोले रहियूं आहिनि। नार वारनि समुंडनि ते रुगो ईरान ऐं पाड़े सीरियन जो हक़ आहे। आबराह हुर्मुस जे इस्तेमाल लाइ दुश्मन खे मिलियल बुनियादनि जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई विच ओवर ऐं आबराह हुर्मुस बाबति 10 स्ट्रेटेजिक तजवीज़ूं जारी करे छॾियूं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त तेहरान दुश्मन कॾहिं बि कंध न झुकाईंदो। गालियुनि जो मक़सद शिकस्त या पोइते हटण न पर क़ौम जे हक़नि जी हासिलात आहे।
0: सदर आसिफ ज़रदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी ऐवान सदर में मुलाक़ात। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार, स्पीकर अयाज़ सादिक, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿिया बि मुलाक़ात में मौजूदु हुआ। मुलाक़ात में मुल्क जी मजमूई सूरतहाल, अफ़गानिस्तान बाबति मामलनि ऐं खिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। हक़ जी जंग जे शहीदनि ऐं पाक फ़ौज खे भेटा पेश कई वई। सदर ज़रदारी चयो त विच ओभर जी चिकताण ऐं सप्लाई चेन मुतासिर थियण बावजूद अवाम खे वध खां वध रिलीफ फराहम कयो वञे।
1: बनू में पुलिस चेक पोस्ट ते हमलो कंदड़ दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फैसलाइती कार्रवाई जो हक़ महफ़ूज़ रखूं था। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ते वाज़े करे छॾियो। अफ़गान नाज़िमुल उमूर जी परडेही आफ़ीस तरफ़ी बनू में पुलिस पोस्ट ते दहशतगर्द हमले लाइ अफ़गान सरज़मीन जे इस्तेमाल ते सख़्त एहतजाज। परडेही तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिरा बि चयो आहे त जांच ऐं शाहिदनि मां साबित थियो आहे त बनू में पुलिस चेक पोस्ट ते हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दनि कई। गडि॒यल क़ौमनि जी रिपोर्ट्स में बि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तनज़ीमनि जी मौजूदगी जूं साबितियूं आहिनि। अफ़गान तालिबान ख़ारिजन हिंदुस्तानी फितने ऐं दाइश ख़िलाफ़ कार्रवाई करे।
0: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो सऊदी अरब जे परडे॒ही वज़ीर फैसल बिन फरहान सां फ़ोन ते राब्तो। ईरान अमरीका जंग समेत खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। अॻवाननि ईरान ऐं अमरीका जे ॻाल्हि लाइ पाकिस्तान जी टियाकड़ी ते ख़्याल जी ॾे वठि कई। ॿिन्ही अॻवाननि जी खिते में अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते बि इतफ़ाक़।
1: महांगाई सटियल अवाम मथां हिकु भेरो ॿीहर पेट्रोल पंप किरण जूं तयारियूं। ओगरा तेल अघनि में वाध वारी समरी पेट्रोलियम वारी वज़ारत खे उमाणे छॾी। पेट्रोलियम अघनि में वाध बाबति फ़ैसिलो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ कंदो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब पार्लियामेंट हाउस आॾो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त पूरी दुनिया में डिमांड मैनेजमेंट थी रही आहे। जिन पाड़ेसरी मुल्कनि वटि तेल घणी मक़दार में मौजूदु आहे उते बि डिमांड आहे। मौक़ो मिलंदे ई अवाम खे रिलीफ फराहम कंदासीं।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो? हाणे वक्त आहे चमकण जो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 खां शाम 5 ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।